हम आकाशवाणी दिल्ली के FM रेनबो चैनल से बोल रहे हैं 102.6 पर। आप जुड़े हैं हमारे साथ इस वक्त भक्ति संगीत पर आधारित हमारे दैनिक कार्यक्रम, हमारे नियमित कार्यक्रम आराधना से। वंदे मातरम।

यह आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 29वीं तिथि, तदनुसार 20 जुलाई 2026 सुबह के 5:53 और लगभग 50 सेकंड हुए हैं। अब इन मीटर्स पर हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

आकाशवाणी दिल्ली का FM रेनबो चैनल है और आप जुड़े हैं इस वक्त हमारे सुबह के प्रसारणों में। 5:56 हुए हैं। आइए लेते हैं एक संक्षिप्त रूपरेखा अब से लेकर दिन भर 102.6 पर प्रसारित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में।

अब से कुछ देर बाद यानी 6:02 पर नूपुर कुलश्रेष्ठ लेकर आएंगे कार्यक्रम सुप्रभात। इस कार्यक्रम के बाद रेणु भट्ट प्रस्तुत करेंगी कार्यक्रम गुड मॉर्निंग एनसीआर। सूचना प्रद इस कार्यक्रम में आप वर्ल्ड चेस डे पर एक छोटी सी जानकारी सुनेंगे और इसके बाद स्पोर्ट्स पल्स होगा जिसमें शिवेंद्र चतुर्वेदी की प्रस्तुति में आपको खेल संबंधी जानकारी दी जाएगी। हिंदी में समाचार होंगे 8:00 और इसके बाद एक बार फिर से नूपुर होंगे आपके साथ आकाशवाणी।

0: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। संसद का मॉनसून अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। सरकार ने सदन के सुचारू कामकाज के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग का आग्रह किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज चिसिनाउ में मोल्दोवा की राष्ट्रपति माइया संडू के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने समान नागरिक संहिता विधेयक को मंजूरी दी। जनजातीय समुदायों को इसके दायरे से बाहर रखा जाएगा। जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिलों में अचानक बाढ़ और भूस्खलन से 11 लोगों की मृत्यु, 8 लोग लापता। अमेरिका ने 9वीं रात भी ईरान पर हमले किए। हॉर्मुज जलडमरू मध्य में तनाव गहराया और स्पेन ने फीफा विश्व कप जीता। खिताब का बचाव करने उत्तरी अर्जेंटीना को 1-0 से हराया। और अब समाचार विस्तार से। संसद का मॉनसून अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। ये 13 अगस्त तक चलेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 25 दिन के अधिवेशन में सदन की 19 बैठकें होंगी।
2: संसद के मानसून सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा किया जाएगा। आज लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा निर्धारित है, जबकि राज्यसभा में राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा सूचीबद्ध है। इसके अलावा मानसून सत्र के दौरान जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक, आयकर संशोधन विधेयक और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक पर भी चर्चा किए जाने की संभावना है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इससे पहले सरकार ने कल संसद भवन में एक सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। 40 राजनीतिक दलों के 50 से अधिक नेता इस बैठक में शामिल हुए। बैठक के पश्चात संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का आग्रह किया।
3: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी, क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें।
1: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कल कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाई। इस दौरान सरकार और विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों ने सत्र में उठाए जाने वाले विधायी और अन्य मुद्दों पर चर्चा की। सदस्यों ने जनहित और राष्ट्रीय महत्व के कई मुद्दों पर चर्चा का सुझाव दिया। श्री बिरला ने सभी दलों से यह अपील की कि वे कार्यवाही को सुचारू और व्यवस्थित ढंग से चलाने में पूरा सहयोग करें। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि आज से शुरू हो रहे संसद अधिवेशन के मद्देनजर नई दिल्ली जिले में किसी भी विरोध मार्च या जुलूस के लिए किसी ने कोई अनुमति नहीं मांगी है और न ही दी गई है। पुलिस ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लागू है, इसलिए जंतर मंतर को छोड़कर क्षेत्र में विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और 5 या अधिक व्यक्तियों के जमावड़े पर सख्त प्रतिबंध है। मध्य प्रदेश विधानसभा का मॉनसून अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस अधिवेशन में समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक पेश किया जाएगा।
4: मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कल भोपाल जिले के जगदीशपुर में कैबिनेट बैठक हुई। इस बैठक में यूसीसी विधेयक 2026 के प्रारूप को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस ब्रीफिंग में कहा,
5: विवाह एक ही लागू होगा, दूसरा विवाह निषेध माना जाएगा। जब तक कि कानून सम्मत रूप से विवाह विच्छेद नहीं हो तब तक दूसरे विवाह की परमिशन उसको नहीं रहेगी। उत्तराधिकारी का चयन भी उसी प्रकार से रहेगा। इस कानून के बाद सबको समान रूप से उत्तराधिकारी एक कानून से चलने के लिए बाध्यता रहेगी और एक उत्तराधिकारी में महिला पुरुष का भी अधिकार कम ज्यादा नहीं होगा, दोनों को समान होगा।
4: यूसीसी विधेयक के मुताबिक लिव इन में रहने वालों को एक महीने के भीतर पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा, साथ ही गांव स्तर तक शादी का रजिस्ट्रेशन जरूरी किया जाएगा। हालांकि आदिवासी समाज को इससे बाहर रखा गया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
6: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज चिशिनाओ में मोल्दोवा की राष्ट्रपति माइया संडू के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू मोल्दोवा संसद के अध्यक्ष इगोर ग्रोसू से भी मिलेंगी और मोल्दोवा भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों से बातचीत करेंगी। इसके बाद वे एक व्यापार फोरम को संबोधित करेंगी। मोल्दोवा यात्रा के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू भारतवंशियों से भी मिलेंगी। किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की ये मोल्दोवा की पहली यात्रा है। श्रीमती मुर्मू इन तीन देशों मोल्दोवा, नॉर्थ मैसिडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर हैं। यात्रा के दूसरे चरण में राष्ट्रपति कल नॉर्थ मैसिडोनिया पहुंचेंगी। अमरीका ने लगातार नवी रात भी ईरान पर हमले किए। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये हमले ईरान की उन सैन्य क्षमताओं को कमजोर करने के लिए जारी रहेंगे जिनका इस्तेमाल होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर हमले के लिए किया जाता है।
2: अमरीकी हमलों से पश्चिमी एशिया में तनाव और गहरा गया है। इससे पहले लगातार 8वीं रात हमलों के दौरान अमरीकी सेना ने ईरान के कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया था, जिनमें तटीय निगरानी और एयर डिफेंस सुविधाएं, समुद्री क्षमताओं और मिसाइल व ड्रोन स्टोरेज स्थल शामिल थे। अमरीकी सेना ने इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर के उन ठिकानों को भी निशाना बनाया जहां से 17 जुलाई को जॉर्डन में अमरीकी सैनिकों पर हमले किए गए थे। पश्चिमी एशिया में 50,000 से अधिक अमरीकी सैनिक तैनात हैं। पिछले हफ्ते अमरीका ने ईरान के दक्षिणी प्रांतों में सैन्य ठिकानों और बुनियादी ढांचे पर कई हमले किए हैं। अमरीका का कहना है कि इन हमलों का उद्देश्य ईरान की उस क्षमता को कमजोर करना था जिससे वे होर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जलपोतों के लिए खतरा पैदा करता है। समाचार कक्ष से अमीशा।
1: जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिले में कल बाढ़ और चट्टाने खिसकने से 11 लोगों की मौत हो गई। 8 लोग लापता हैं। कई लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने स्थिति की समीक्षा की है और केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। हिमाचल प्रदेश में दक्षिण पश्चिमी मॉनसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि राज्य के अधिकांश हिस्सों में चेतावनी जारी की गई है।
3: हिमाचल प्रदेश में मॉनसून की बारिश का दौर लगातार जारी है। बीते 24 घंटों के दौरान सबसे अधिक 82.2 मिलीमीटर वर्षा जिला कांगड़ा के धर्मशाला में दर्ज की गई। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज चंबा, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिलों में भारी से अत्यधिक भारी वर्षा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं ऊना, हमीरपुर, कुल्लू, शिमला और सोलन जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट तथा बिलासपुर, किन्नौर और लाहौल स्पीति जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने चेतावनी दी है कि इस दौरान भूस्खलन, अचानक बाढ़ आने और बादल फटने जैसी घटनाएं हो सकती हैं। आज सभी शिक्षण संस्थानों को बंद रखने के निर्देश जारी किए हैं। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: उत्तराखंड में रविवार सुबह से लगातार बारिश हो रही है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि बारिश से मैदानी और पहाड़ी दोनों इलाकों में जनजीवन पर असर पड़ा है।
4: भारतीय मौसम विभाग ने देहरादून, टिहरी, गढ़वाल और हरिद्वार जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं उत्तरकाशी, नैनीताल, चंपावत, पौड़ी और उधम सिंह नगर के लिए ऑरेंज अलर्ट और रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में येलो अलर्ट जारी किया है। बारिश के अलर्ट के मद्देनजर आज ज्यादातर जिलों में सभी सरकारी और निजी विद्यालय तथा आंगनवाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित किया गया है। भारतीय मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी विभागों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। साक्षी सिंह, आकाशवाणी न्यूज, देहरादून।
1: उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिलों में मध्यम से भारी बारिश हो रही है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि राज्य भर में जनजीवन अस्त व्यस्त है।
5: मुजफ्फरनगर जिले में भारी बारिश के कारण एक पुरानी इमारत गिरने से 4 बच्चों समेत 5 लोगों की मौत हो गई, 5 अन्य लोग घायल हो गए। भारी बारिश ने राज्य की राजधानी लखनऊ समेत कई जिलों में आम जनजीवन को प्रभावित किया है। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और कहा है कि मौजूदा मौसम की स्थिति अगले 3 दिनों तक बनी रहने की संभावना है। अगले 24 घंटों में तराई के इलाके और बुंदेलखंड के कुछ हिस्सों में भारी बारिश होने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: स्पेन ने फीफा विश्व कप जीत लिया है। न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में फाइनल में 90 मिनट तक संघर्षपूर्ण और रोमांचक मैच में कोई गोल नहीं हो पाया। स्पेन के फेरान टोरेस ने अतिरिक्त समय में गोल करके अपनी टीम को 1-0 से जीत दिला दी।
6: फीफा फुटबॉल विश्व कप का इतिहास लिखा जा चुका है। स्पेन ने दूसरी बार पुरुष फीफा विश्व कप अपने नाम कर लिया है। इससे पहले स्पेन ने 2010 में खिताब जीता था। इस जीत के साथ स्पेन एक ही समय में पुरुष और महिला फुटबॉल विश्व कप विजेता पहला देश बन गया है। इस हार ने अर्जेंटीना और लियोनेल मेसी के शानदार दौर का भी अंत कर दिया है। मेसी ने अपनी टीम को 2022 फीफा वर्ल्ड कप और 2021 तथा 2024 में कोपा अमेरिका का खिताब जिताया था। टोरेस फीफा विश्व कप फाइनल में गोल करने वाले पांचवे ऐसे खिलाड़ी बने जो मैच के अंतिम समय में किसी अन्य खिलाड़ी के स्थान पर टीम में खेले। 48 टीमों के साथ ये अब तक का सबसे बड़ा फीफा विश्व कप था। ये टूर्नामेंट अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में खेला गया। और अगर बात करें पुरुष क्रिकेट की तो इंग्लैंड ने लंदन के लॉर्ड्स में तीसरे और निर्णायक एक दिवसीय मैच में भारत को 27 रन से हराकर श्रृंखला 2-1 से जीत ली है। इंग्लैंड ने निर्धारित 50 ओवर में 3 विकेट पर 387 रन बनाए। भारतीय टीम 7 विकेट पर 360 रन ही बना सकी। इससे पहले भारतीय टीम ने साउथहैम्पटन के रोज बाउल में पहला मैच जीता था। दूसरा मैच कार्डिफ में मेजबान टीम ने जीता।
1: ये समाचार हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
7: धन्यवाद मुनीष। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर सबसे ऊपर आज से शुरू हो रहे संसद के मॉनसून सत्र और तेज बारिश के कारण जम्मू कश्मीर और लद्दाख में प्रभावित जनजीवन को पटरी पर लाने के लिए जारी बचाव और राहत अभियान की खबरें दिखाई देती हैं। जनसत्ता ने जम्मू कश्मीर के साथ उत्तराखंड और नागालैंड में भारी बारिश से मची तबाही का समाचार सचित्र प्रकाशित किया है। साथ ही आज से शुरू हो रहे मॉनसून सत्र से पहले आयोजित सर्वदलीय बैठक को शीर्ष समाचार बनाते हुए लिखा है, सर्वदलीय बैठक में राम मंदिर चढ़ावा चोरी, पेपर लीक और एथेनॉल जैसे मुद्दों पर चर्चा। जापान ओपन जीतने वाली पीवी सिंधु की तस्वीर भी कई अखबारों ने पहले पन्ने पर छापी है। दैनिक ट्रिब्यून ने खबर को शीर्षक दिया है, पीवी सिंधु ने जापान ओपन जीतकर रचा इतिहास। राजस्थान पत्रिका ने इस खबर को शीर्षक दिया है, पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में खत्म किया खिताबी सूखा। लोकसत्ता ने भारत के पहले शब्द संग्रहालय का कोलकाता स्थित राष्ट्रीय पुस्तकालय परिसर में उद्घाटन करते केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह का चित्र प्रमुखता से छापा है। पत्र ने दिल्ली हाईकोर्ट की इस टिप्पणी को भी खबर बनाया है, सोनम वांगचुक को इलाज के लिए उठाना गलत नहीं। दैनिक भास्कर का शीर्ष समाचार है, वांगचुक को सरकारी अस्पताल ले जाना मनमानी नहीं हाईकोर्ट। हिंदुस्तान के ने निजी क्षेत्र के रॉकेट विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण को अपने संपादकीय लेख का विषय बनाया है। शीर्षक दिया है, वैज्ञानिकों को बधाई।
1: और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का मॉनसून अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। सरकार ने सदन के सुचारू कामकाज के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग का आग्रह किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज चिसिनाउ में मोल्दोवा की राष्ट्रपति माया संडू के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने समान नागरिक संहिता विधेयक को मंजूरी दे दी है। जनजातीय समुदायों को इसके दायरे से बाहर रखा जाएगा। जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिलों में अचानक बाढ़ और भूस्खलन से 11 लोगों की मृत्यु, 8 लोग लापता। अमरीका ने नवी रात भी ईरान पर हमले किए और स्पेन ने फीफा विश्व कप जीत लिया है। खिताब का बचाव करने उतरी अर्जेंटीना को 1-0 से हराया। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
8: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। The headlines. Monsoon session of parliament begins today. Government seeks cooperation of all political parties for smooth functioning of parliament. President Draupadi Murmu to hold delegation level talks with the Moldovan counterpart Maya Sandhu in Chisinau today. Madhya Pradesh cabinet approves uniform civil code bill. Tribal communities to be kept outside its purview. Flash floods and landslides claim 11 lives in Rajouri and Poonch districts of Jammu and Kashmir, 8 people still missing. US strikes Iran for 9th night as Strait of Hormuz tensions deepen. And Spain beat defending champions Argentina 1-0 in extra time to win FIFA World Cup 2026. And now the news in detail. The monsoon session of Parliament will begin today. It will continue till 13th of August. The 25-day session will have 19 sittings, a report.
9: During the session, several important bills are expected to be taken up for discussion and passage. Today, the Lok Sabha

प्रोग्राम थे आपको लिखेंगे पता से हेलो प्लीज प्ले द सॉन्ग कैसी मुझे तुम मिल गई फ्रॉम द मूवी गजनी और एक गाना रिक्वेस्ट करी कि पता से देवाशीष हजारिका मजुली असम परा वेल थैंक यू सो मच देवाशीष अपने लिखी कि पता दिया कारण तो अपने मांगिया गाना तो इतना बजाय दीबले से तो शुनी कि एन्जॉय करी सो लिसनर्स कान इतना शुनब बनी दयाल ए आर रहमान और श्रेया घोषाल लगा वास्ते फिल्म आज गजनी

क्या कहना आरे तो गीत करने लिखी ना पता है से भगजन परा सुनीता बसुमतरी ताए इतु गाना डेडिकेट करी दिया से देवाशीष भाईकोन रुकुविले अमोल बिमोल धनंजय फागु उरांग कसीम अली अखुजो सोबी सोबी बादर और सुपा चुबाकी जमीर और कुलमणि बरुआ एंड ऑल फ्रेंड्स को इना लिखी की ना बताया से वेल थैंक यू सो मच सुनीता अपने लिखी की ना बताई दिया निशिना तो गाना होनी कि ना एंजॉय करी भी

ये रखो, गुड आफ्टरनून अर्जय, नमस्कार। मूवी का नाम केसारी, सॉन्ग टाइटल ऑफ द सॉन्ग तेरी मिट्टी, और एक गीत करने लिखी ना बताया से मध्य प्रदेश ग्राम जसवादी से कोई ना लिखिया से दुर्गेश नगनपुरी राधेश्याम नगनपुरी वंदना भावना बिंदु गोलू कुसुमबाई बाबू दिव्यांश सुरेश कुमार दक्षी सुरेश वर्मा ऋषभ कनक और भावना वर्मा प्रेमलाल वर्मा निकेश हर्षिता और ममता बाई वर्मा को इन्हें लिखे से। वेल थैंक यू सो मच दुर्गेश जी एंड परिवार फॉर योर मैसेज। तो इतना गाना होने लगो बी प्राक लगा वास्ते से फिल्म से केसारी।

0: नए झुमके
1: ना, पहले बचत,
0: पहले झुमके।
1: सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो, और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री।
0: लेकिन झुमकों का क्या,
1: जाते हो कि
0: हाँ?
1: लगाओ इंजेक्शन।
2: RBI कहता है,
3: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
4: FM Dragoban
5: 103 MHz
4: News, Music and Entertainment FM 103 MHz.
6: गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक लिसनर्स, इटो आकाशवाणी कोहिमा FM ट्रकबान 103 मेगाहर्ट्ज पर अपनी यान प्रोग्राम उनी आसे और इटो आको कंटिन्यू करे हबो SMS रिक्वेस्ट प्रोग्राम दैट इज अपना लोके पसंद करे हिंदी फिल्म गान प्रोग्राम। तो यते आको लिखि गिना पते आसे गुड आफ्टरनून कुत्सोर जुई वेली चकबा कोइना लिखि गिना पते आसे आ ताई संग संग मांगी आसे अकेले अकेले कहां जा रहे है, इटो गाना बजाय दिबी को आसे। তাই ফিল্ম লাগা নামটো লিখা নাই, কিন্তু দিস ইজ ফ্ৰম দ্য মুভি এন ইভিনিং ইন পেৰিছ। আৰু তাই এইটো গানা ডেডিকেট কৰি দি আছে, জালে খো চিজো ভেবই চিজো লাটো ফেচাও পুনি নিনু পুভেজ চুৰ ভেফিতা চুৰ থুবুই চুমি য়েচিনিয়ে চিজো। আৰু থেংক ইউ কইনা লিখি আছে, ৱেল থেংক ইউ চ' মাছ আপুনি লিখি কিনে পঠাই দিয়াৰ কাৰণে। তো আপুনি মাঙিয়া গানা যেতিয়া বজাই দিবলৈ আছে শুনিবি, এইটো গানা মোহাম্মদ ৰফি লগাও আছে, ফিল্ম আছে এন ইভিনিং ইন পেৰিছ।

प्रोग्रामटि को भनेको किशोर कुमार र लता मङ्गेशकरको आवाजले फिल्ममा प्रेम पुजारी र त्यो गीत करणले लेखिकन बताएको छ जोगेन्द्र रोङपी सोनाली एङटिपी र धरमकिरी रोङपी सारिही जान कार्बियल लङ आसामपारा लेखिकन बताएको छ तखानि त्यो गाना डेडिकेट गरिदिए छ असली वो कि हो बिरेन हन्से चुबाके जमेर देवाशिष हजारिका फागु उरङ हेकुतो जिमो इचाकातो अछुमी जुमन केक्रिलेटो लाकी पात्रो मीनार खान नितुल बोरा अखारो शान प्रेमिका तेवा रमेश पात्रो रकुविले मेथा शिकारी रोंगफार तिजामो लथा उर्मिला तमुली वर्णिका दिदी वांगपा यम दिदी जुबेनी और एयर ट्रगोपान लगा सब आर्जे और शुनी थका सब क्या लिखी आ Well, thank you so much. লিখি কিনা পঠাই দিয়া নিচিনা এইটো গানা সব মানুহ শুনি কিনে এনজয় কৰিবি

नमस्कार, प्रस्तुत है अभी तक के एफएम रेनबो मुख्य समाचार। संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो गया है। इसे पहले हंगामे के बीच सदन की कार्रवाई रोक दी गई थी। ये सत्र 13 अगस्त तक चलेगा। 25 दिन के सत्र में सदन की 19 बैठकें होंगी। संसद के मॉनसून सत्र से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चाहे मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, दोनों के सक्रिय रहने पर वे अत्यंत उत्पादक सिद्ध होते हैं। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि आज से शुरू हो रहे संसद सत्र के मद्देनजर नई दिल्ली जिले में किसी भी विरोध मार्च या जुलूस के लिए कोई अनुमति नहीं मांगी गई है और न ही दी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज चिशनाव में मोल्डोवा के राष्ट्रपति मायोवा संडू के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू मोल्डोवा संसद के अध्यक्ष इगोर ग्रोसू से भी मिलेंगी और मोल्डोवा भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों से बातचीत करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 58वें अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड में 4 स्वर्ण पदक जीतने पर भारतीय टीम को बधाई दी है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि ये प्रतिष्ठित वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भारत का अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन था। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज स्वतंत्रता सेनानी बटुकेश्वर दत्त की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल एसआईटी ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपनी स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत की है। पंजाब सरकार ने मनरेगा से विकसित भारत जी राम जी योजना में सुचारू परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिए व्यापक व्यवस्था की है। ये योजना 1 जुलाई से पंजाब में लागू हुई। अमरीकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने कहा है कि उसने ईरान पर नए सैन्य हमलों की शुरुआत की है। ये ईरान पर हमलों की लगातार 9वीं रात है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में अगले 2 दिन अत्यधिक तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली और हरियाणा में भी तेज बारिश हो सकती है। जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिले में कल बाढ़ और चट्टानी खिसकने से 11 लोगों की मौत हो गई। पुरुषों के क्रिकेट में इंग्लैंड ने कल रात लंदन के लॉर्ड्स में खेले गए तीसरे वनडे मैच में भारत को 27 रन से हराया और 3 मैचों की श्रृंखला 2-1 से अपने नाम की। और फीफा वर्ल्ड कप 2026 के फुटबॉल के जबरदस्त फाइनल में स्पेन ने अर्जेंटीना को हराकर दूसरी बार वर्ल्ड कप जीता। फेरन टोरेस ने एक्स्ट्रा टाइम में स्पेन के लिए एकमात्र गोल किया। तो ये थे अभी तक के आकाशवाणी रेनबो मुख्य समाचार।

0: आकाशवाणी
1: रेनबो हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत करती हूं। मैं आकृति खंडूरी और कहना आपसे यही चाहती हूं कि पानी जीवन की सबसे अनमोल पूंजी है। आप भी यही मानते हैं ना? आज यही अमूल्य जल हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर खड़ा है। देश के कितने ही हिस्से हैं जहां बारिश की कमी है, कहीं नदियां सूख रही हैं तो कहीं ग्राउंड लेवल वाटर लगातार नीचे होता जा रहा है। सूखा केवल पानी की कमी का नाम नहीं है, ये खेती, एनवायरनमेंट, समाज, आप पर, हम पर, सभी पर गहरा प्रभाव डालता है। और ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या हम केवल बारिश का इंतजार करें या फिर आज से ही ऐसी तैयारियां शुरू कर दें कि पानी की कमी का डटकर मुकाबला किया जा सके। रेनबो हेल्पलाइन में आज हमारा टॉपिक है ड्रॉट प्रेपरेशंस, हाउ कम्युनिटीज कैन बिल्ड वाटर रेजिलियंस, यानी कि सूखे से निपटने की तैयारी और उससे उबरने की सामुदायिक क्षमता। इस विषय पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ फोन पर उपस्थित रहेंगे श्री कृष्ण एस वत्स, जो कि मेंबर हैं, एचओडी हैं एनडीएमए यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के। और आप उनसे सूखे से निपटने की तैयारी में आप और हम मिलकर क्या कर सकते हैं, इस विषय पर कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो ज़रूर हमसे जुड़िएगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868107070, जिस पर आप अपने मैसेजेस हम तक पहुंचा सकते हैं, अपने सवालों को, अपनी क्वेरीज को हम तक पहुंचा सकते हैं। और इसके अतिरिक्त हमारा टोल फ्री नंबर भी है 1800111026, जिस पर आप हमें फ़ोन करके अपने सवालों को श्री वत्स भी पहुंचा सकते हैं। सबसे पहले मैं श्री कृष्ण एस वत्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूं रेनबो हेल्पलाइन में। नमस्कार सर। नमस्कार। मेरे ख्याल से उन तक हमारी आवाज जो है अभी तक नहीं पहुंच पा रही है, उनसे हम जरूर मुलाकात करेंगे, बात करेंगे, क्योंकि सूखे से निपटने की तैयारियां जिस पर हम सोचते हैं कि शायद आपका और हम कर क्या सकते हैं, ये तो सरकारों का काम है, लेकिन ऐसा नहीं है। कम्युनिटीज सामुदायिक रूप पर एक से एक हाथ मिलाकर आगे बढ़ेंगी तो जरूर सूखे से निपटने में का हम डटकर मुकाबला कर सकते हैं। यही रेनबो हेल्पलाइन पर आज का विषय है। 9868107070 हमारा व्हाट्सएप नंबर है, जिस पर आप अपने सवालों को हम तक पहुंचा सकते हैं।

0: रेनबो हेल्पलाइन में आज बात हो रही है सूखे से बचाव की और पानी की सुरक्षा की। पानी जिसकी बूंद बूंद कीमती है और पानी की कमी से बचने के लिए केवल सरकार ही नहीं बल्कि आपकी और हमारी यानी कि पूरे समाज की तैयारी की जरूरत है। ड्राउट प्रिपेयर्डनेस, हाउ कम्युनिटीज कैन बिल्ड वाटर रेजिलियंस, यही हमारा आज का विषय है, सूखे से निपटने की तैयारी और उससे निपटने की सामुदायिक क्षमता। श्री कृष्ण एस वत्स साहब जो कि मेंबर हैं और HOD हैं NDMA नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, हमारे साथ फोन पर उपस्थित हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हेलो, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आपको हमारी आवाज पहुंच पा रही है?
1: अभी थोड़ा और थोड़ी
0: जी जी
1: धीरे आ रही, काफी आवाज धीरे आ रही है थोड़ा अगर।
0: अच्छा, मैं टेक्निकल डिपार्टमेंट से बात करती हूँ, लेकिन पहला सवाल सर आपसे यही पूछना चाहूंगी कि
1: मेरी आवाज आ रही है आप तक?
0: मुझे आपकी आवाज बहुत क्लियर आ रही है, बहुत क्लियर आ रही है।
1: अच्छा,
0: तो जी आपसे यही पूछना चाहूंगी कि जो सूखे की स्थिति है देश में वर्तमान, मानसून आ चुका है यूं तो, लेकिन सूखे की स्थिति क्या है ये आपसे जानना चाहूंगी। पहला सवाल तो मेरा यही होगा।
1: इस वर्ष देश में एल नीनो का प्रभाव के बारे में एक साधारण अनुमान था
0: जी।
1: भारतीय मौसम विभाग है जो हमारी जो केंद्रीय अर्ली वार्निंग एजेंसी है, इन्होंने ऐसा कहा था कि देश में इस साल बारिश कम होने की संभावना है क्योंकि एल नीनो का प्रभाव देश पर रहेगा, और जो अभी तक स्थिति बनी है उसमें वह दिख रहा है कि बारिश जो है अपेक्षा के हिसाब से कम हुआ है
0: जी।
1: तो एक तो जून में बारिश कम हो गई थी, काफी करीब करीब 30% बारिश कम हुई जून में। जून में मानसून का आगमन होता है तो जितनी बारिश की अपेक्षा थी जून में उससे 30% कम हुई है, लेकिन जुलाई में बारिश का परिमाण जो है वो बढ़ गया है, और वो जो है जो सूखे की स्थिति थी उसमें कुछ कमी आई है। फिर भी पूरे देश में जो है, पूरे देश को अगर देखें तो जो अपेक्षा के हिसाब से 24% बारिश कम हुई है, उसका ज्यादा असर जो है सो पूर्व और जो उत्तर पूर्व के राज्यों में है, वहाँ करीब करीब 35% की कमी है। फिर जो उत्तर पश्चिम भाग है वहाँ भी 23% कमी है, जो दक्षिण राज्य है उसमें 27% की कमी है, और केंद्रीय भाग है उसमें 14% की कमी है। तो कुल मिला जुला करके देश में जो है अपेक्षा से 24% बारिश कम हुआ है, और हालांकि जुलाई में काफी बारिश हुई है, और जुलाई में जो बारिश हुई है उसके परिणाम स्वरूप जो है फसलों की बुआई का काम भी शुरू हो गया है, और स्थिति बेहतर हुई है, लेकिन फिर भी जैसा कहा गया अपेक्षा से कम बारिश हुई है, और इसका ना परिणाम पानी की जो स्थिति है उस पर जरूर होगा
0: जी। जी हमारे जो श्रोतागण हैं उनके सवाल भी हम तक आने शुरू हो गए हैं सर। तो एक तो सवाल ये हो रहा है कि भाई सूखे का जो असर है वो किसानों पर तो यकीनन पड़ता ही है, लेकिन आम आदमी पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और हम इसके लिए क्या योगदान कर सकते हैं, आम नागरिक जो है वो क्या योगदान कर सकता है?
1: देखिए आम आदमी जब बारिश कम होती है तो पानी की उपलब्धता पर उसका सीधा उससे प्रभावित होते हैं। तो एक तो होता है कि हमारे जो जलाशय हैं, बड़े जलाशयों में जो पानी की मात्रा है वो कम हो जाती है, उसके कारण जो जल आपूर्ति है उस पर थोड़ा सा असर पड़ता है। हमारे राज्य सरकारों का, केंद्र सरकार का यह पूरा प्रयास रहता है कि इन जलाशयों में जो पानी की व्यवस्था है उसको हम अच्छे से उसको रैशनलाइज करके जो पानी जल आपूर्ति है उस पर कोई असर ना आए, और इसके लिए हम जो आवश्यक व्यवस्था करें, जल का जितना ज्यादा से ज्यादा है उसको हम स्टोर करें, और जो सरफेस वाटर है, जो सतह पर जो पानी रहता है उसको हम अच्छे से उसको कंजर्व करें, उसका उसका सदुपयोग करें, तो पानी की जो जो स्थिति है वो पानी आपूर्ति की जो स्थिति है वह ठीक ठाक बनी रहती है। नागरिकों का यह कर्तव्य हो जाता है कि जो पानी उपलब्ध होता है उसका हम अच्छे से इस्तेमाल करें, वो पानी का दुरुपयोग ना करें। और है ना, जब ऐसी स्थिति आ गई है कि जहाँ बारिश कम हो रही है तो जो पानी का का संग्रह है उसको ध्यान में रखते हुए हम पानी कम खर्च करें, उसमें मितव्ययता बरतें।
0: जी जी, कुछ ऐसा ही सवाल राजेश यादव साहब का कानपुर से हम तक आया है और वो ये कहते हैं कि अगर किसी कॉलोनी में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की सुविधा नहीं है तो ऐसे में हम इस विषय के संबंध में क्या कर सकते हैं?
1: तो अगर रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था नहीं है तो एक तो करनी चाहिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग, दूसरा यह है कि कम से कम वो इस तरह से हम करें कि जो जो पानी आपकी कॉलोनी में आ रहा है उसको जमीन के अंदर तक जाने दें, वो आपकी कॉलोनी से बाहर ना निकल जाए। नो, पानी को रोकना और रोक करके जो जो ग्राउंड वाटर लेवल है ना, जो जल के अंदर जो पानी का सतह है उसको हम कैसे ज्यादा ऊंचा कर सकें, पानी का ज्यादा दुरुपयोग जो है हम बोरवेल के माध्यम से जो पानी ज्यादा ना निकालें, पानी का के सतह को बनाए रखें, तो इसके कारण जो है वो पानी का स्तर जो है वो बढ़ता रहेगा, जो जमीन के अंदर जो पानी है जिस पर हम काफी कुछ निर्भर करते हैं वह जब वह बना रहता है और उसके कारण जो है पानी हमेशा उपलब्ध रहता है। तो एक तो कि पानी का हम ठीक से इस्तेमाल करें, दूसरा जो पानी जमीन के अंदर जाने दें, और तीसरा यह कि बोरवेल के माध्यम से हम पानी को ज्यादा ना निकालें। तो ये तीनों अगर हम करेंगे तो पानी का सतह बना रहेगा, व्यक्तिगत स्तर पर, सामाजिक स्तर पर हमारी हमारा उत्तरदायित्व तो बनता है कि हम पानी को ज्यादा से ज्यादा रिस्टोर करें, कंजर्व करें
0: जी।
1: और उसका सही इस्तेमाल करें।
0: जी, सूखे से निपटने की तैयारियां, यही रेनबो हेल्पलाइन में आज का विषय है। और सूखे से निपटने की तैयारी केवल सरकारों की जिम्मेदारी नहीं है, हम आज ये बात कर रहे हैं कि आप और हम मिलकर इस दिशा में बहुत कुछ कर सकते हैं। श्री कृष्ण एस वस, जो कि मेंबर हैं और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, हमारे साथ फोन पर उपलब्ध हैं। आपके सवाल हम तक लगातार पहुंच रहे हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868107070। इस पर आपकी क्वेरीज जो हैं आप हम तक पहुंचाइए और मेरे माध्यम से पहुंचेंगी श्री कृष्ण एस वत साहब तक, और आपके इन सभी सवालों का जवाब आपको आज के प्रोग्राम में ज़रूर मिलेगा। और साथ ही साथ हमें बहुत सी वो टिप्स भी मिलेंगी जिससे हम सामुदायिक रूप से जल संरक्षण को कर सकते हैं। श्री वत साहब जुड़े रहिएगा हमारे प्रोग्राम से। फिलहाल एक म्यूजिकल ब्रेक मैं ले रही हूँ और फिर आपसे बातचीत करूँगी।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: रेनबो हेल्पलाइन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं आकृति खंडूरी और कहना आपसे यही चाहती हूँ कि बदलता मौसम, घटती बारिश और पानी की बढ़ती मांग, ये सिग्नल है कि वाटर कंजर्वेशन जो है केवल ऑप्शन नहीं है, जरूरत है आज की। और रेनबो हेल्पलाइन में आज हम यही समझ रहे हैं कि सूखे से निपटने की तैयारियां पहले ही कैसे की जाएं और अपने भविष्य को सुरक्षित कैसे बनाया जाए, और ऐसे में आपकी और हमारी क्या जिम्मेदारी है, सामुदायिक रूप से आप और हम क्या कर सकते हैं जल संरक्षण के लिए। हमारे साथ हमारे आज के खास मेहमान श्री कृष्ण एस वत्स साहब फोन पर उपस्थित हैं, और आप मेंबर और HOD हैं NDMA यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में। और सर, बहुत से सवाल हम तक पहुंच रहे हैं, नए जुड़ने वालों को बता देते हैं

0: पशुओं के लिए पानी लाया जा सकता है और उनको पानी दिया जा सकता है। तो एक तो पशुओं को और पानी के अलावा फॉडर की भी जरूरत होती है, और सूखे में अक्सर जो है ना चारे का भी की भी किल्लत होती है, चारे की भी आवश्यकता होती है। तो चारे के लिए एक अलग से वो हमें बुआई करनी चाहिए, चारे का एक अलग से अभियान करना चाहिए ताकि चारा उपलब्ध हो। पशुओं के स्वास्थ्य की हमें सरकार की भी चिंता रहती है और सरकार इसके लिए ढेर सारे कदम उठाती है, कई जगह चारे की आपूर्ति की व्यवस्था की जाती है। तो आप सरकार से भी हम सब संपर्क कर सकते हैं कि चारे की व्यवस्था और ज्यादा से ज्यादा की जा सके और चारे के साथ साथ पानी की भी व्यवस्था की जा सके, सामुदायिक व्यवस्था की जा सके ताकि हम अपने पशुओं को बचा सकें।
1: जी जी।
0: तो यह तो पशुओं के लिए है, किसानों के लिए भी जो किसान हैं और वो अपनी बुआई ठीक से नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि पानी की समस्या है, तो वो जो वैकल्पिक जो क्रॉप्स हैं, वैकल्पिक फसल वो ले सकते हैं, दलहन तिलहन ये जो सारे जो हैं जिनमें पानी की आवश्यकता कम होती है, तो ऐसे फसलों को लगा सकते हैं। जब ऐसे फसल लगाते हैं तो हमें इससे हमें चारे में भी मदद मिलती है, इन फसलों का बाद में चारे के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो मतलब एक वैकल्पिक कृषि व्यवस्था की आवश्यकता होती है और इसके लिए हम सरकार जो है एडवाइजरी इश्यू करती है और यह अपेक्षा रहती है कि थोड़ा अगर पानी कम हो रहा हो तो धान जैसे जो है ना जो फसल है जिसमें ज्यादा पानी की आवश्यकता है वो थोड़ा कम करें, और ऐसे फसल जहां पानी की कम आवश्यकता होती है वो ऐसे फसल लें। तो एक पूरी कृषि व्यवस्था की बात हम यहाँ कर रहे हैं जिसमें फसलों को अच्छी तरह से हम उसका ये कर सके, एक वैकल्पिक फसल की व्यवस्था कर सके और पशुओं की व्यवस्था कर सके।
1: जी, पैंथर तोमर साहब का किशनगंज दिल्ली से हम तक सवाल पहुंचा है और वो आपसे पूछना चाहते हैं कि सरकार द्वारा सूखे से प्रभावित क्षेत्रों के लिए किस तरह के सहायता कार्यक्रम चलाए जाते हैं, तो कुछ तो आपने खैर अभी मेंशन ही किया है।
0: जी, एक जी। तो कृषि विषय जहां आप कई किसानों को बीज की आवश्यकता होती है तो वो बीज दिए जाते हैं क्योंकि उनको फिर से बुआई करनी पड़ती है, तो वो सीड्स की व्यवस्था करना बहुत ही आवश्यक होता है। दूसरा जो है कि आप ना किस तरह से ज्यादा सिंचाई की व्यवस्था कर सकें और जरूरत पड़ने पर हम किसानों के लिए बिजली की भी व्यवस्था कर सकें ताकि वो ना अपना बोरवेल चला सकें, लेकिन ये सब कुछ हमें एक संतुलन के साथ करना पड़ता है। इसके साथ साथ मैंने कहा जैसे कि पशुओं के लिए आवश्यक व्यवस्था वो जरूरी होती है, और फिर जो है कि हम जो लोगों के पानी की व्यवस्था वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वो प्राथमिकता होती है, बहुत ही आवश्यक प्राथमिकता होती है, और जहाँ कहीं भी गांव में इस तरह की पानी की दिक्कतें आती है वहाँ सरकार टैंकर्स की व्यवस्था करती है और टैंकर के माध्यम से पानी की आपूर्ति की जाती है।
1: जी।
0: तो ये सारी चीजें होती हैं और साथ साथ है ना हम इसका भी ध्यान रखते हैं कि सबों को है ना बिजली की आपूर्ति हो, और जबकि बिजली की आपूर्ति पर असर पड़ता है लेकिन फिर भी लोगों को ज्यादा से ज्यादा समय तक बिजली मिल सके।
1: जी।
0: तो ये सारी बातें हम सरकार का जो जो सूखे के लिए जो व्यवस्था की जाती है इसमें अंतर्भाव होता है।
1: जी, एक और प्रश्न आया है सर कि जलवायु परिवर्तन के इस दौर में क्या सूखा प्रबंधन को स्कूली पाठ्यक्रम का एक अनिवार्य हिस्सा नहीं बनाना चाहिए क्योंकि इसके बहुत दीर्घकालिक लाभ हो सकते हैं, आप क्या सोचते हैं इस विषय में?
0: जो स्कूल के स्तर पर जल की व्यवस्था के लिए काफी कुछ पढ़ाया सिखाया जाता है, तो जब भी हम जल की व्यवस्था की बात करते हैं, वाटर कंजर्वेशन की बात करते हैं, तो उसमें वो सूखे की बात आ ही जाती है क्योंकि हम जल का उपयोग ठीक से कर सकें,

0: जो जल है, भूजल है, जो ग्राउंड वाटर है, उसका हम ठीक ठाक से इस्तेमाल करें, उसका ज्यादा ना अतिरिक्त दोहन ना करें, है ना, वो बहुत ही आवश्यक है। जो हमारे जलाशयों में पानी है उसको हम अच्छे से, उसका हम संग्रह कर सकें, उसको हम बढ़ा सकें, और ना रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था करें। तो इन सब चीजों के बारे में बच्चों को जानकारी होनी चाहिए, और अगर वो ना पानी की जो व्यवस्था है इसके बारे में उनको जानकारी हो, इनके बारे में एक जो एक कॉन्शियसनेस है ना, वो अगर उत्पन्न हो जाए तो वो आदमी के साथ वो सारी बातें जीवन भर साथ चलती है।
1: जी जी, हर्षवर्धन साहब दिल्ली से हमसे जुड़े हैं और उनका मैसेज सर ये है कि दो प्रश्न इनके हैं। एक तो ये कहना चाहते हैं कि सूखे को आपदा कब माना जाता है, कब वो आपदा में परिवर्तित होता है?
0: देखिए, जब है ना, मान लीजिए कि अगर 20% से कम पानी होगा है, जो हमारा जो नॉर्मल रेनफॉल है उससे 20% से कम पानी हुआ हो, अगर वो सिंचित प्रदेश ना हो, अगर वो वहां पर जो बुआई की स्थिति काफी कमजोर हो, और अगर फिर जो वेजिटेशन इंडेक्स होता है कि वहां पर जो है ना वेजिटेशन की स्थिति है, तो वो उसमें काफी कुछ ह्रास हो, तो इन सारी चीजों को हम एक इकट्ठे ला करके उसको देखते हैं, उसके बाद वो सूखे को हम घोषित करते हैं, सूखा घोषित करते हैं।
1: जी जी,
0: तो ये कई कई जो है पहलू हैं उनको दृष्टिगत रखते हुए सूखे की घोषणा होती है।
1: जी, और इन्हीं का दूसरा प्रश्न सर ये है कि अगर किसी राज्य में सूखे की स्थिति घोषित हो जाती है, तब NDMA, राज्य सरकार, जिला प्रशासन और दूसरी एजेंसीज जो हैं, किस तरह से समन्वय और राहत प्रबंधन का काम करती हैं?
0: तो कई चीजों पर काम होता है। एक तो ना जो लोगों को ये जो सीरियल्स होते हैं ना, फूड की व्यवस्था, खाद्य पदार्थों की व्यवस्था, तो उसके तहत सरकार सबों को है ना राशन कार्ड के आधार पर वो खाद्य ये तो चावल दाल इन सारी चीजों की वितरण की व्यवस्था तो होती ही होती है। इसके साथ साथ हम पानी की आपूर्ति की व्यवस्था, पशुओं के लिए अलग व्यवस्था, फिर जो कृषि का जो नुकसान हुआ है उसके लिए जो मतलब अगर किसानों को किस तरह की मदद दी जाए, खास करके ना सीड के लिए, बीज के लिए, तो वो बहुत ही आवश्यक होता है। और फिर अगर कृषि पर थोड़ी सी संकट आ गया और लोगों को काम नहीं मिल रहा है कृषि क्षेत्र में, तो फिर वो हम जैसे कि ना राज्य गांव के स्तर पर जो किस तरह से नए काम शुरू किए जाए जिसके माध्यम से लोगों को रोजगार मिले, तो वो रोजगार की भी योजना सरकार करती है। तो रोजगार, पानी, खाद्य पदार्थों की व्यवस्था और बिजली की व्यवस्था, और किसानों के लिए अतिरिक्त सुविधाएं ताकि उन पर ज्यादा भार न पड़े, तो ये सारी चीजें हम सूखे के अंतर्गत करते हैं।
1: जी जी, एक और प्रश्न आ रहा है कि सर क्या आजकल कुछ ऐसी प्रणालियां या तकनीकें उपलब्ध हैं जिससे सूखे की संभावना का पहले से ही अनुमान लगाया जा सके?
0: इस बार भी सूखे का जो अनुमान है वो पहले ही से लगा था, मतलब हम इसको अप्रैल और से ही हम मार्च अप्रैल से ही हम इसको इसका इसको मॉनिटर कर रहे हैं
1: जी।
0: और हमें इस साल इस अपेक्षा थी कि इस बार जो एल नीनो का जो प्रभाव पड़ेगा उसके कारण जितनी अपेक्षा है उससे कम बारिश होगी, जो औसत है हमारा बारिश का जो औसत है, औसत बारिश का परिमाण है उससे कम होगी, तो उस ना वो जो मॉनिटरिंग है उसके तहत जो हमने आवश्यक कदम लेने चाहिए वो हम ले रहे हैं।
1: जी जी, धन्यवाद बहुत बहुत। काफ़ी सारे आपके सवाल हम तक लगातार पहुंच रहे हैं। सूखे से निपटने की तैयारियां और उसे निपटने में जल संरक्षण के लिए आपकी और हमारी भागीदारी कैसी होनी चाहिए, इसी विषय में श्री कृष्ण एस वत्स साहब रेनबो हेल्पलाइन में आज हमें बहुत कुछ बता रहे हैं। आप मेंबर NHOD हैं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में और आपके सवाल हम तक पहुँच रहे हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 9868 107070 पर।

0: रेनबो हेल्पलाइन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूं। मैं आकृति खंडूरी और कहना आपसे यही चाहती हूं कि चाहे गांव हो या शहर हो, पानी की जरूरत हर किसी को होती है, क्योंकि पानी की कमी जब दस्तक देती है तो उसका घर, उसका जो असर है वो आप तक, हम तक, हर घर तक पहुंचता है। और ऐसे में आप और हम मिलकर, कम्युनिटीज मिलकर कैसे जल सुरक्षित भविष्य बना सकती हैं, यही बात हो रही है आज रेनबो हेल्पलाइन पे। हमारे साथ फोन पर उपस्थित हैं हमारे एक्सपर्ट श्री कृष्ण एस वत्स, जो कि मेंबर हैं, साथ ही साथ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण, प्रबंधन प्राधिकरण में। और सर, बहुत से सवाल हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हम तक पहुंच रहे हैं। नए जुड़ने वाले आपको बताई देती हूँ, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868107070। और फिलहाल ये सवाल हम तक पहुंचाने वाली हैं मृदुस्मिता, और इनका सर ये कहना है कि जो ड्राउट प्रोन डिस्ट्रिक्ट्स हैं, सूखे से ग्रसित जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ पर क्या प्रॉपर इरिगेशन चैनल को प्लेस कर दिया गया है? एक सवाल तो इनका ये है।
1: इसका
0: जी बताएं
1: प्लीज। तो यह है कि जो सूखा प्रवण क्षेत्र है उसमें धीरे धीरे सिंचन की व्यवस्था का विस्तार हो रहा है, और ये एक साथ संभव नहीं है। लेकिन अगर आप देश में जो पूरा क्षेत्र है सिंचन व्यवस्था के अंतर्गत क्षेत्र है, उसमें आप देखेंगे तो हर दशक में इसका विस्तार हुआ है, क्योंकि केंद्र और राज्य सरकारें इस क्षेत्र में लगातार निवेश कर रही हैं और धीरे धीरे सिंचन क्षेत्र का विस्तार हो रहा है। नए जलाशय बन रहे हैं और नहरें बन रही हैं, और इसके कारण ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र आ रहे हैं। लेकिन अभी भी करीब करीब मुझे लगता है कि जो सूखा प्रवण क्षेत्र है उसमें 50% जो है क्षेत्र वहाँ अभी तक वहाँ सिंचन की व्यवस्था नहीं है, और वहाँ अभी भी लोग फसल के लिए बारिश पर निर्भर हो रहते हैं।
0: जी।
1: तो वहाँ पर जो है वो अगर बारिश कम होती है तो उस पर प्रभाव पड़ता है, लेकिन ये प्रभाव जो है हर साल अब कम होते जा रहा है। जितना जैसे पहले था, पहले 20-25-30% के आसपास ही सिंचन की व्यवस्था थी, आज वो बढ़ करके 40 से ऊपर हो गई है। तो इस पर इसमें लगातार वृद्धि हो रही है, और इसके कारण जो है पानी की जो उपलब्धता है वो सूखा प्रवण क्षेत्रों में, वो निश्चित रूप से उसमें वृद्धि हुई है विगत कुछ वर्षों में
0: जी।
1: और इसके कारण सूखे के प्रभाव में भी कुछ कमी आई।
0: जी इनका एक और सवाल है सर कि इज देयर एनी ड्राउट रेजिस्टेंट स्पीसीज ऑफ राइस एंड शीट ग्रेन स्ट्रेन, जो कि किसानों को सूखे के दौरान
1: हेल्प। हाँ, ऐसा आजकल हमेशा इस बात पर काफी शोध हो रहा है।
0: हाँ।
1: और इस तरह के फसलों की व्यवस्था जिसमें पानी की आवश्यकता कम हो, ये इस बात पर हमेशा जोर दिया जा रहा है, और जो कृषि संबंधी जितने भी अनुसंधान संस्थान हैं उन्होंने भी इस तरह के जो स्टडी स्पीसीज हैं उस पर उनका काफी जोर रहता है। तो ये जो है तो निश्चित रूप से ना, जहां पर पानी का कम इस्तेमाल हो, ऐसे ऐसे बीजों की, ऐसे फसलों के लिए हम सरकार का जोर रहा है।
0: जी सर, क्लाइमेट चेंज की वजह से जो है जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है उसका एक कारण कटते हुए जंगल भी हैं, तो इन्हीं का एक तीसरा सवाल ये है कि हम कैसे फॉरेस्ट कवर को इंक्रीज कर सकते हैं, जिससे कि मिट्टी का जो सॉइल मॉइस्चर है उसको कंजर्व किया जा सके।
1: जी, वो बहुत ही आवश्यक है कि हम फॉरेस्ट कवर को बढ़ाएं। और एक अच्छी बात जो है देश में कि आप अगर पिछले 20 सालों का आंकड़ा देखें तो फॉरेस्ट कवर में लगातार वृद्धि हुई है। तो हमारा फॉरेस्ट कवर जो है तो 33% एक आइडियल कवर होना चाहिए, उससे ज्यादा ही है अभी। तो ये फॉरेस्ट कवर में के को हमने बनाए रखा है, और ये एक हमारी उपलब्धि है। इसके साथ साथ फॉरेस्ट कवर के साथ साथ हमें अपने वेजिटेशन कवर को बढ़ाना चाहिए। जो नॉन फॉरेस्ट एरियाज हैं उसमें भी हमें वेजिटेशन को और प्रोत्साहित करना चाहिए और उसके लिए भी सरकार ने है ना कई कदम उठाए हैं हाल में, है ना। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी एक पेड़ माँ के नाम ऐसा एक कैंपेन किया था और इसका काफी अच्छा असर हुआ है। हमने भी काफी है ना कई सारे सरकार के सारी संस्थाओं ने मिलजुल करके ना ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने की बात की है और उसके लिए अभियान चलाया है। तो एक तरफ फॉरेस्ट कवर बढ़ना चाहिए और दूसरी तरफ जो है नॉन फॉरेस्ट एरियाज में भी वेजिटेशन कवर बढ़ना चाहिए, ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए। इसके कारण जो है सो वाटर कंजर्वेशन जो है पानी का संग्रह है उस पर हमारा ना अच्छा परिणाम पड़ता है।
0: जी, बहुत से सवाल हमारे श्रोताओं के हम तक पहुंच रहे हैं। अनिंदिता सिन्हा, इनका सर ये सवाल है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट्स या सेक्टर्स या पॉपुलेशन ग्रुप हैं जो बहुत वल्नरेबल हैं ड्राउट के लिए और क्यों, ऐसा क्यों है?
1: वो कुछ एरिया जो हैं हमारे देश के वो रेन शैडो एरियाज में आते हैं जहां मॉनसून का उतना वो आगमन जो है वो उतनी अच्छी तरह से नहीं हो पाता है ना। मानसून का जो जैसे कि महाराष्ट्र के कुछ भाग हैं, कर्नाटक के कुछ भाग हैं, तेलंगाना के कुछ जिले हैं और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कुछ जिले हैं। तो जो मध्यवर्ती देश का जो मध्यवर्ती भाग है उसमें कई जिले ऐसे हैं जहां पर बारिश का जो परिमाण है वो उतना अच्छा नहीं है और इसका जो है भौगोलिक स्थिति से इसका संबंध है। तो जो जनरली जो देश में बारिश होता है उसकी अपेक्षा में इन जिलों में कम बारिश होती है और इसके कारण इन जिलों में सूखे की स्थिति बनी रहती है। लेकिन इन जिलों में हाल में जो सिंचन के लिए सरकार ने व्यवस्था की है उसका भी एक अच्छा असर पड़ा है।
0: जी जी, नरेश चौहान साहब अजमेर से हमसे जुड़े हैं और इनका ये कहना है कि सर बताएं क्या पुराने तालाबों को या बावड़ियों को पुनर्जीवित करना आज भी उपयोगी होगा और अगर करना है तो कैसे किया जाए?
1: निश्चित रूप से सबसे महत्वपूर्ण बात है ये कि हम पुराने जलाशयों को, तालाबों को और जो भी लोकल लेवल पर जिस तरह बहुत देश के हर भाग में बहुत तरह के वाटर स्ट्रक्चर है इसमें बड़ी विविधता है तो इन सबको हमें फिर से उनको पुनर्जीवित करना चाहिए। हम कोशिश भी कर रहे हैं, जो सरकार का जो वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम चलता है ना वो उस जल संवर्धन कार्यक्रम उसमें भी इसकी कोशिश की जाती है और इसकी कोशिश हमें व्यक्तिगत स्तर पर सामूहिक स्तर पर भी करना चाहिए। जब भी हम जलाशयों का को पुनर्जीवित करते हैं उनमें पानी धारण जो जल है उसको धारण करने की क्षमता बढ़ती है तो उस हिसाब से हमें है ना पानी की उपलब्धता बढ़ती है और उसका सीधा है ना जो है सो सूखे की स्थिति पर एक अच्छा असर उसका पड़ता है। तो हमें निश्चित रूप से इसकी ओर सबसे ज्यादा ध्यान देनी चाहिए। ये हमारे हमारे धरोहर का भाग है, हमारे जो सामूहिक जो है ना चेतना और हमारी शिक्षा सबका भाग है, बहुत ही आवश्यक है कि इसकी ओर हम ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें।
0: जी जी, राजस्थान से ही एक और प्रश्न आया है ओम प्रकाश साहब का बीकानेर से और वो कहते हैं कि रेगिस्तानी क्षेत्रों के लोग पानी का बेहतर प्रबंधन कैसे कर सकते हैं? सर
1: जो भी पानी हो रहा है उसका हम उसको हम रोकें, उसका संवर्धन करें सतह के स्तर पर, भूजल के स्तर पर, तो उससे जो है पानी की उपलब्धता बनी रहती है। कभी कभी हम ज्यादा पानी का इस्तेमाल करने लगते हैं तो जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो नीचे चला जाता है और वो जब बहुत नीचे चला जाता है तो फिर उसको निकालने में क्योंकि पानी अगर है पानी सीमित है उसको पानी को बढ़ाने के लिए पानी के संवर्धन की आवश्यकता है। तो आप जो भूजल है भूजल को आप ज्यादा उसका दोहन ना करें, उसका ज्यादा ओवर एक्सप्लॉयट ना करें, जलाशयों में पानी को रखें उसका ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा उपयोग ना करें तो कम बारिश होने के बाद भी पानी की उपलब्धता बनी रहती है। और ऐसे कुछ गतिविधियां जिसमें पानी की बहुत ज्यादा जरूरत हो उस गतिविधियों से बचें, जैसे ऐसे फसल ना लें जहां पर की पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। कम पानी वाले जो फसल हैं उनको उस क्षेत्र में हमें ज्यादा प्रोत्साहित करना चाहिए।
0: जी जी, और अंत में सर हमें क्या कहना चाहेंगे आपकी जल संरक्षण के लिए या सूखे से निपटने की तैयारी के लिए?
1: हम जो अभी जो स्थिति है जिसमें बारिश कम हो रही है इस पर हम लगातार दृष्टि बनाए हुए हैं, हम इसको मॉनिटर कर रहे हैं, हम सारे राज्य सरकारों को हमने आगाह किया है और सबको कहा है कि हमें किसी भी तरह की अभाव न हो लोगों के स्तर पर। मतलब वो मैंने कहा जैसे कि है ना चावल दाल और जो खाद्य पदार्थ हैं उनकी आपूर्ति बनी रहनी चाहिए, पानी की व्यवस्था बनी रहनी चाहिए, किसानों को ज्यादा से ज्यादा मदद मिलनी चाहिए। ये सारी सारे जो एडवाइजरीज हैं ये हम इश्यू कर रहे हैं लगातार, लेकिन हमारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी भी बनती है, सामूहिक जिम्मेदारी भी बनती है कि हम पानी का सही से सही इस्तेमाल कर सकें। हम जो देश में जो पानी कम हो रहा है उसकी ओर हम निश्चित रूप से अपना ध्यान बना कर रखें और यह सोचे कि यह जो आज जो स्थिति बनी हुई है इसको निपटने की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार पर नहीं है, वो हम पर भी है और हमारे समाज पर भी है। तो सब मिलजुल करके हम इस स्थिति को अगर हम अच्छे से मुकाबला कर सकें तो देश निश्चित रूप से हम है ना इससे निपटने में कामयाब होगा।
0: थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर फॉर बीइंग विद अस। आपने बहुत अच्छे से हमें बताया कि सूखे से बचाव और पानी के संकट से बचाव के लिए आपकी और हमारी यानी कि सामाजिक भागीदारी जो है वो किस तरह से होनी चाहिए और सामुदायिक प्रयासों से ये संभव भी है। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस।
1: थैंक यू।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं।

आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: लेट्स जॉइन द मेगा प्लांटेशन ड्राइव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक पेड़ माँ के नाम अभियान बन रहा ग्रीन दिल्ली का आधार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा 70 लाख पौधारोपण अभियान शुरू। सीएम रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में प्लांटेशन अब सुपर इजी। ग्रीन ड्राइव पोर्टल पर स्लॉट बुक कीजिए, नियरेस्ट नर्सरी से फ्री सैपलिंग्स पाइए।
2: मैं रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि क्लीन और ग्रीन दिल्ली के लिए मेगा प्लांटेशन ड्राइव का हिस्सा बनें।

नमस्कार, दो बज चुके हैं। पेश हैं इस घंटे के एफएम रेनबो मुख्य समाचार। संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो गया है। सदन की शुरुआत में ही विपक्षी सदस्यों के जोरदार हंगामे के बीच सदन की

कार्रवाई रोक दी गई। ये सत्र 13 अगस्त तक चलेगा। संसद के मानसून सत्र से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चाहे मानसून हो या मानसून सत्र, दोनों के सक्रिय रहने पर वे अत्यंत उत्पादक सिद्ध होते हैं। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि आज से शुरू हो रहे संसद सत्र के मद्देनजर नई दिल्ली जिले में किसी भी विरोध मार्च या जुलूस के लिए कोई अनुमति नहीं मांगी गई है और न ही दी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की तीन देशों की यात्रा के पहले चरण में मोल्दोवा गणराज्य पहुंची। चिशिनाव अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर मोल्दोवा गणराज्य के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मिहाई पोपसोई ने उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 58वें अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड में 4 स्वर्ण पदक जीतने पर भारतीय टीम को बधाई दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये इस प्रतिष्ठित वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भारत का अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन था। गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज स्वतंत्रता सेनानी बटुकेश्वर दत्त की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आज ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले तृणमूल कांग्रेस गुट को पार्टी के 3 बैंक खातों को संचालित करने की अंतरिम अनुमति देने से इनकार कर दिया। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल एसआईटी ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपनी स्थिति रिपोर्ट पेश की है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने कहा कि उसने ईरान पर नए सैन्य हमलों की शुरुआत की है। ये ईरान पर हमलों की लगातार 9वीं रात है। असम में लगातार हो रही बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति और खराब हो गई है, जिससे ऊपरी असम के कई जिलों में हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में अगले 2 दिन बहुत तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली और हरियाणा में भी तेज बारिश हो सकती है। जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिले में कल बाढ़ और चट्टाने खिसकने से 11 लोगों की मौत हो गई। पुरुषों के क्रिकेट में इंग्लैंड ने कल रात लंदन के लॉर्ड्स में खेले गए 3रे वनडे मैच में भारत को 27 रनों से हराया और 3 मैचों की श्रृंखला 2-1 से अपने नाम की। और अंत में फीफा वर्ल्ड कप 2026 के फुटबॉल के जबरदस्त फाइनल में स्पेन ने अर्जेंटीना को हराकर दूसरी बार वर्ल्ड कप जीता। फेरन टोरेस ने एक्स्ट्रा टाइम में स्पेन के लिए एकमात्र गोल किया। ये थे अब तक के एफएम रेनबो मुख्य समाचार।

0: आकाशवाणी।
1: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं 102.6 आकाशवाणी रेनबो पर आपका पसंदीदा कार्यक्रम आशियाना। और आशियाना में हम बात करते हैं परिवार से जुड़ी हुई। जी हाँ, परिवार के साथ खुशियाँ बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, और इसीलिए परिवार के साथ अपनी बॉन्डिंग को कैसे करें स्ट्रॉन्ग और परिवार से जुड़े हुए मुद्दों को कैसे संभालें, कैसे उनको हैंडल करें, इन पर बात होती है हमारे इस खास शो में। तो शुरुआत करते हैं एक बेहद खूबसूरत गीत के साथ।

के लिए कहीं ना कहीं हम अपने आप को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, अपनी कुछ आदतों को ख़त्म करते हैं, कुछ नई आदतें डालने की कोशिश करते हैं, जिससे कि परिवार के साथ, परिवार के लोगों के साथ हमारा सामंजस्य बना रहे। तो दोस्तों, आज की जो तेज़ रफ्तार ज़िंदगी है ना, उसमें कमाई तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन उतना ही ज़रूरी है उस कमाई का सही प्रबंधन, यानी कि सही मैनेजमेंट। कई बार क्या होता है कि इनकम तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन उसके बावजूद मंथ एंड तक जेब हो जाती है खाली, और उसकी वजह कम कमाई नहीं होती बल्कि बगैर किसी प्लानिंग के खर्च करने की आदत होती है। तो आज हमने सोचा कि क्यों ना इसी मुद्दे पर बात की जाए कि और आपको बताया जाए कुछ आसान आदतों के बारे में, जिनसे घर बैठे आप पूरे परिवार का जो वित्तीय प्रबंधन है, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, उसको बेहतर कर सकते हैं, जिससे कि आपकी बचत भी हो सकती है, ज़रूरतें भी पूरी हो सकती हैं, और साथ ही साथ जो भविष्य है ना आपका, आपके परिवार का, वो भी सुरक्षित रह सकता है।

कर रहे थे घर की आर्थिक सेहत की, तो अगर आप अपने घर की आर्थिक सेहत को दुरुस्त रखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको बनाना होगा अपने घर का बजट। होता क्या है ना कि महीने के कुछ खर्चे तो फिक्स होते हैं, चाहे वो राशन की बात हो, बिजली, बच्चों की पढ़ाई, दवाइयाँ, ये सब प्रायोरिटीज पे होते हैं और ये फिक्स ही होते हैं। तो आप इन खर्चों के बाद अपने कुछ और खर्चों को तय कर सकते हैं, फिर चाहे वो एंटरटेनमेंट के लिए हो या फिर कुछ और आपकी शॉपिंग हो। आप ये कोशिश कर सकते हैं कि हर महीने अपनी आय का कम से कम 20% हिस्सा बचा कर रखें, और अगर आपको लगता है कि आप सेविंग नहीं कर पा रहे हैं तो आप शुरुआत में ही उस 20% हिस्से को अलग रखते हैं, जिससे कि आप अपने अंदर अपने आप को फोर्स कर सकें बचत करने के लिए। तो दोस्तों याद रखना होगा कि जो बजट बनाना है वो केवल हिसाब रखना नहीं है बल्कि अपने सपनों को सुरक्षित रखना है।

0: join the Mega Plantation Drive. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक पेड़ माँ के नाम अभियान बन रहा ग्रीन दिल्ली का आधार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा 70 लाख पौधारोपण अभियान शुरू। सीएम रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में प्लांटेशन अब सुपर इजी। ग्रीन ड्राइव पोर्टल पर स्लॉट बुक कीजिए, नियरेस्ट नर्सरी से फ्री सैपलिंग्स पाइए।
1: मैं रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि क्लीन और ग्रीन दिल्ली के लिए मेगा प्लांटेशन ड्राइव का हिस्सा बने।
2: दादी दादी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
3: पता का चाय, गजब का स्वाद।
4: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

बिल्कुल दोस्तों, ये दिल भी ना कभी कभी नादान हो जाता है जब उसको दिखता है एक आकर्षक ऑफर। जी हाँ, जब हम शॉपिंग करने लगते हैं तो कई बार मार्केट में किसी शोरूम में आकर्षक जो ऑफर देखने को मिलता है तो लगता है कि चलो इसे ले ही लेते हैं, या फिर अगर फ़ोन पर भी स्क्रॉल कर रहे हैं और ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं तो भी ये जो अट्रैक्टिव ऑफर्स होते हैं ना, ये हमको लुभाते हैं, ललचाते हैं कि हम कोई आइटम खरीद ही लें। लेकिन होता क्या है ना कि ऐसे में जब ज़रूरत नहीं भी होती है वो सामान हम अपनी कार्ट में ऐड कर लेते हैं और कभी कभी हम उसका पेमेंट भी कर देते हैं, क्योंकि इस आकर्षक ऑफर के दौर में ये बहुत आसान हो गया है। इसीलिए जब भी आप कोई भी बड़ी खरीदारी कर रहे हैं तो खुद से पहले सवाल पूछें कि क्या वाकई में इस चीज की जरूरत है। या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि जब आप बाजार जा रहे हैं तो उससे पहले एक लिस्ट बना लें जिन भी चीज़ों की आपको ख़रीदारी करनी है, जिनकी आपके घर में ज़रूरत है, उनको लिख लें, लिस्ट बना लें। और हाँ, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल केवल उतना ही करें जितना आप समय पर चुका सकें। दोस्तों पता है, अगर समझदारी से आप खर्च करते हैं तो जो घर का फाइनेंशियल मैनेजमेंट है ना, वो बढ़िया रहता है, दुरुस्त रहता है।

0: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थ

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
3: हाँ तो भैया, क्या प्लान है 31 दिसंबर की रात का? FM रेनबो का प्लान है आपके साथ मिलकर कुछ मौज कुछ मस्ती करने का। हाँ तो भाई, मिलकर बढ़ाएंगे 2026 में पहला कदम। क्यों ये कहता है दिल? इस मुलाकात में आपके साथ रहेंगे संतोष राव, माला नेगी, राजेश कुमार, प्रवीण कुमार, वीर दमन और ओपी राठौर भी। क्यों ये कहता है दिल? 31 दिसंबर की रात उमंग 2026 में न्यू ईयर पार्टी सिर्फ FM रेनबो पर। न्यू ईयर स्पेशल उमंग 2026 रात 9 बजे से नए साल तक सिर्फ FM रेनबो पर।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: दोस्तों आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो पर प्रोग्राम आशियाना। बात हो रही है घर में फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। दोस्तों फाइनेंस को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि पता नहीं जीवन में कब कौन सी परिस्थिति आ जाए, इसीलिए परिवार के पास एक इमरजेंसी फंड तो ज़रूर होना चाहिए। लेकिन इस इमरजेंसी फंड के लिए आपको कहीं ना कहीं छोटी छोटी बचत करनी होगी और ऐसा करना होगा जिससे बचत की आदत डालनी होगी अपने अंदर, जिससे कि आप अपने भविष्य के लिए एक ऑटोमेटिक सेविंग शुरू करें और आपकी आर्थिक ताकत को बना के रखें जो परिवार के आपके परिवार के काम आए। One more time.

दोस्तों आप भी अपने परिवार के साथ खुशी के साथ फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। फिलहाल आकाशवाणी रेनबो पर समय हुआ है कार्यक्रम उमंग का। ये NCERT द्वारा प्रायोजित है।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज के उमंग कार्यक्रम में। श्रोताओं, जलगांव जंक्शन महाराष्ट्र से डॉक्टर दिनेश काले जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: शब्द तभी अमर होते हैं जब वे केवल लिखे नहीं जाते बल्कि जिए भी जाते हैं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर दिनेश काले इस सुंदर विचार के लिए। और आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरेलकर और रतनमाला जी का।
2: छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, नोमेश सिंगरौल, नेहा और वान्या सिंगरौल।
0: और बड़ोदरा पंचमहल गुजरात से रवि जोशी जी का।
2: संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव।
0: और भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू जी का संदेश आया है। लिखते हैं,
2: नमस्कार, ये भी जानिए श्रृंखला के अंतर्गत चार प्रसिद्ध झीलों के बारे में गहन और दिलचस्प जानकारी प्रदान की, सुनकर हम अभिभूत हो गए। आपसे एक विनम्र निवेदन है कि आप विश्व के प्रमुख बांधों और प्रमुख पुलों पर भी ये भी जानिए श्रृंखला के अंतर्गत जानकारी मुहैया करवाने की कृपा जरूर करें। आपको इस हेतु अग्रिम धन्यवाद और आभार।
0: जी, सुहाना चौक ग्राम जसवाड़ी से सूरज कुमार ढाकसे जी लिखते हैं, प्रिय अजीत जी और विमलेश जी, आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार। गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सकुशल होंगे। मैं सूरज कुमार ढाकसे दोनों आंखों से नेत्रहीन हूं। मैं प्रतिदिन आपका कार्यक्रम रेडियो पर सुनता हूं। आपके इस कार्यक्रम में एक से एक बढ़कर कहानियां, कविताएं और जानकारियां सुनकर मुझे बहुत खुशी होती है।
2: धन्यवाद श्रोताओं संदेश भेजने के लिए। और अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों की।
0: तो श्रोताओं, हमारा पहला प्रश्न था कि कंगारू के कितने पैर होते हैं?
2: इसका उत्तर है साथियों, कंगारू के चार पांव ही होते हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि कंगारू की पूंछ भी एक मजबूत अंग होती है जो उसके चलते समय उसके संतुलन को बनाए रखने में मदद करती है। वो कई बार चलते हुए अपनी पूंछ का भी सहारा लेता है, इसलिए ऐसा लगता है कि वो पांच पैरों से चल रहा हो। इसलिए बोलचाल में कहा जाने लगा है कि कंगारू के पांच पैर होते हैं, लेकिन वैज्ञानिक रूप से पूंछ को पांव नहीं माना जा सकता।
0: जी, तो श्रोताओ अब सुनिए हमारा पूछा गया अगला प्रश्न। हमारा प्रश्न था कीलाक्षर किसे कहते हैं और ये किस सभ्यता की देन है?
2: प्राचीन मेसोपोटामिया की सभ्यता में लोग मिट्टी की पट्टियों पर पेंसिल नुमा नुकीली कील से लिखते थे जिसे कीलाक्षर कहा जाता था। कीलाक्षर यानी कीलों से लिखे हुए अक्षर।
0: जी, और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न जो हमने आपसे पूछा था। हमने पूछा था श्रोताओं कि पेपर शब्द किस वनस्पति के नाम से बना है और ये वनस्पति कहाँ पैदा होती थी?
2: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। पेपर शब्द मिस्र में नील नदी के तट पर पाई जाने वाली पेपरिस वनस्पति या घास के नाम से आया है।
0: जी, और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमने आपसे पूछा था कि कोडेक्स किसे कहते हैं?
2: कोडेक्स आधुनिक पुस्तक के प्राचीन रूप को कहते हैं जिसमें पन्नों को किनारे से सिलकर या बांधकर पुस्तकें बनाई जाती थीं।
0: जी, और हमारा अंतिम प्रश्न था, जोहन्स गुटेनबर्ग ने छापने की मशीन का आविष्कार कब किया?
2: इसका उत्तर है साथियों, जोहन्स गुटेनबर्ग ने छापने की मशीन का आविष्कार सन 1440 में किया था।
0: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए। आपसे निवेदन है इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे कार्यक्रम उमंग से। और अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है श्रोताओ, मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
2: मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था?
0: भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। और आप हमें संदेश व प्रश्नों के उत्तर हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in।
2: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIET NCERT को फॉलो करना न भूलें।
0: तो श्रोताओ अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आइए सुनते हैं सबसे पहला कार्यक्रम, शीर्षक है न्याय।
2: ये कार्यक्रम हिंदी की कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है जिसमें युवराज सिद्धार्थ के जीवन में घटित एक प्रेरक प्रसंग के बारे में बताया गया है और संदेश दिया गया है कि पशु पक्षी भी हमारे प्रेम और करुणा के अधिकारी हैं।
3: चलो मित्र सिद्धार्थ, उद्यान की ओर चलते हैं, सरोवर के पास।

0: कैसी शांति है। पक्षी नीड़ों की ओर लौट रहे हैं। वहां देखो उस पेड़ पर कैसे वो चिड़िया अपने बच्चे को दाना खिला रही है।
1: अति सुंदर। और तनिक उधर देखो उद्यान के बाहर कैसे एक बछड़ा अपनी माँ की ओर दौड़ा चला जा रहा है और गाय अपने बछड़े को लाड़ कर रही है।
2: साथियों, ये वार्तालाप हो रहा था युवराज सिद्धार्थ और उनके मित्र वसु के बीच। सिद्धार्थ का जन्म लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था, जो कपिलवस्तु नगर का एक ग्राम उद्यान था। उनके पिता राजा शुद्धोधन थे, जो शाक्य गणराज के राजा थे, जिसकी राजधानी थी कपिलवस्तु। युवराज सिद्धार्थ ही आगे चलकर गौतम बुद्ध बने और विश्व को अहिंसा और शांति का पाठ पढ़ाया। प्रारंभ में उनका जीवन राजसी सुख सुविधाओं से भरपूर था। आइए एक बार फिर से चलते हैं उस उद्यान की ओर, जहां दोनों मित्र वार्तालाप कर रहे हैं।
1: युवराज, तनिक ऊपर देखो, कितने सुंदर पक्षी हैं।
0: ये राजहंस हैं। ऐसा लगता है मानो हवा में तैर रहे हैं, और इतनी ही सुंदरता से वे पानी में भी तैर सकते हैं।
1: ओह, देखो, एक राजहंस नीचे की ओर गिर रहा है। हाँ, लगता है उसे तीर लगा है।
0: प्यारे पक्षी, सब ठीक हो जाएगा, घबराओ नहीं। मैं हूं ना, न जाने किस निर्दयी ने इसे घायल कर दिया। भला इसका क्या दोष है?
3: दोष ये है कि ये सुंदर है, प्यारा है, सबको पसंद आता है।
0: क्या सुंदर होना और सबका प्यारा होना कोई दोष है? प्यारे हंस, मैं तुम्हारा ये तीर निकाल देता हूं, फिक्र मत करो। ये निकाल दिया, अब तुम मेरी गोद में थोड़ी देर विश्राम कर लो। मित्र, कोई भी व्यक्ति जिसके पास हृदय है, इन निर्दोष पक्षियों को मार ही नहीं सकता। तुम जरा दौड़कर राजवैद्य से इसके लिए कोई औषधि तो ले आओ।
1: हाँ मित्र, अभी जाता हूं।
2: युवराज सिद्धार्थ ने हंस को विश्राम करने के लिए पास के ही एक कुंज में लिटा दिया और वसु के आने की प्रतीक्षा करने लगे। इतने में उनके चचेरे भाई देवदत्त आ पहुंचे। वे इधर उधर देख रहे थे, मानो कुछ खोज रहे हों।
4: कुमार सिद्धार्थ, कुमार सिद्धार्थ, कुमार सिद्धार्थ, अभी मैंने एक उड़ते हुए हंस को तीर मारकर नीचे गिराया था। मैंने अपनी आंखों से उसे गिरते हुए देखा था। वो इधर ही कहीं आया है। तीर धनुष पर मेरा लक्ष्य अब भली भांति सद गया है। ये बात मैं कल गुरुजी को बताऊंगा तो वो कितने प्रसन्न होंगे। तुम गुरुजी के सामने मेरी गवाही दोगे ना?
0: अवश्य दूंगा देवदत्त, और वो भी प्रमाण के साथ, क्योंकि इसका प्रमाण वो हंस है जिसे तुमने मारा है।
4: आहा, तो हंस तुम्हारे पास है, लाओ उसे मुझे दे दो।
0: क्यों दे दो?
4: क्यों दे दो, ये तो बड़ा ही विचित्र प्रश्न है भाई। इसलिए दे दो क्योंकि मैंने उसे मारा है।
0: लेकिन मैंने इसे बचाया है।
4: तुम राजकुमार हो इसलिए मुझे धमकी देना चाहते हो। मैं भी देखता हूँ कैसे नहीं दोगे। इसका निर्णय तो अब राज दरबार में ही होगा।
2: तो साथियों, दूसरे दिन दरबार लगा हुआ था।
5: महाराज की जय हो,
6: महाराज की जय हो,
7: महाराज की जय हो।
2: प्रतिहारी ने सभी प्रकरणों की जानकारी दी और बताया कि आज कुमार देवदत्त भी एक प्रकरण न्याय के लिए प्रस्तुत करना चाहते हैं। राजकुमार सिद्धार्थ भी उपस्थित।

0: te.
1: कुमार देवदत्त को प्रस्तुत किया जाए।
2: महाराज को प्रणाम करता हूँ। महाराज, मेरा कहना है कि राजकुमार सिद्धार्थ ने मेरा हंस ले लिया है, जिसे मैंने मारा था। वो मुझे मेरा हंस नहीं दे रहे, मुझे न्याय चाहिए।
1: राजकुमार सिद्धार्थ, क्या ये वही हंस है जो आपकी गोद में है?
3: महाराज को प्रणाम करता हूँ। जी महाराज, ये वही हंस है। मेरा कहना है कि कुमार देवदत्त ने इस हंस को मारा है, लेकिन मैंने इसे बचाया है। अतएव मैं ये हंस इन्हें नहीं दे सकता।
1: लेकिन सिद्धार्थ, देवदत्त ने इस हंस का आखेट किया है। नियम के अनुसार आखेट वीर का अधिकार है। वीर आखेट को छोड़ नहीं सकता।
3: जी महाराज, लेकिन नियम तो ये भी कहता है कि वीर शरणागत को भी नहीं छोड़ सकता। हमारी शाक्य राजवंश की परंपरा और शास्त्रों का नियम तो ये भी कहता है कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है।
2: पर महाराज, मैंने पहले इस हंस को मारा है, इसलिए ये मेरा है।
3: जी, पहले मारा था तभी तो वो मेरी शरण में आया है। बिना मारे वो मेरी शरण में कैसे आता?
1: महामंत्री, समस्या जटिल हो गई है। क्या आप कोई मार्ग सुझा सकते हैं?
4: जी महाराज, आपकी आज्ञा हो तो मैं अभी तुरंत दूध का दूध और पानी का पानी कर सकता हूँ। अब तो निर्णय ये हंस ही करेगा।
1: निर्णय ये हंस ही करेगा? भला वो कैसे आज्ञा है?
4: महाराज, मेरा आग्रह है कि हंस को यहाँ इस आसन पर बैठाया जाए।
0: हंस को आसन पर बैठा दिया गया। हंस भयभीत था, लेकिन सिद्धार्थ उसे सांत्वना दे रहे थे। सभा स्तंभित थी, सभी फुसफुसा रहे थे।
5: पता नहीं ये हंस कैसे बताएगा?
6: गाड़ी में बैठ कर
7: सिद्धार्थ को मिलना चाहिए।
6: इसके पास नहीं जा रहा है।
7: हंस ने बताया होगा कैसे?
6: देवदत्त तो घर में लगा है।
4: कुमार देवदत्त, आप कहते हैं कि इस पर आपका अधिकार है। आसन के पास आइए और हंस को अपने पास बुलाइए।
2: ओ प्रिय हंस, मेरे पास आओ, आ जाओ, आओ मेरे पास, आ जाओ।
0: देवदत्त जितनी बार हंस को बुलाते, वो उतनी ही बार भय के मारे आसन से चिपक जाता। देवदत्त ने बहुत प्रयास किया, लेकिन बात नहीं बनी।
4: अब मैं राजकुमार सिद्धार्थ को सामने बुलाना चाहूंगा और कहूंगा कि वे भी हंस को अपने पास बुलाएं।
3: प्यारे राजहंस, मेरे प्रिय मित्र, डरो मत, तुम्हें कोई हानि नहीं होगी, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। मेरे पास आ जाओ, अपने मित्र के पास आ जाओ, आ जाओ, घबराओ मत।
0: फिर क्या था, पलक भी नहीं झपकी थी, हंस ने अपने पंख फैलाए और उड़ता हुआ सिद्धार्थ की गोद में ऐसे आ चिपका जैसे एक बालक अपनी माँ की गोद में चिपक जाता है।
1: स्वयं इस पक्षी ने अपना निर्णय बता दिया है। हमने सुना था कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। आज साक्षात देख भी लिया। मैं हर्ष के साथ घोषित करता हूँ कि ये हंस युवराज सिद्धार्थ का ही है।
8: महाराज जय हो,
9: महाराज जय हो,
10: महाराज जय हो।
11: अभी आप सुन रहे थे कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक वीणा के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम न्याय। साथियों, इस कार्यक्रम में आपने दो शब्द सुने। पहला शब्द था नीड और दूसरा शब्द था आखेट। तो इसका अर्थ आपको बता देते हैं। नीड शब्द का अर्थ है घोंसला और आखेट शब्द का अर्थ होता है शिकार। अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को, पशु पक्षियों का ख्याल रखने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, सोचिए और इसकी सूची बनाइए। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर भारती कौशिक, ध्वन्यांकन एकांत वशिष्ठ, कलाकार सुनील लोहिया, शशांक शर्मा, बबीता रंजीत और फरहान नकवी, शोध एवं आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण चेतना शर्मा। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम न्याय। आशा है श्रोताओं आपको हमारा ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा।

0: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम वो ब्रह्म तुम ही हो।
1: ये कार्यक्रम विभिन्न जीवन दर्शनों की चर्चा करता है और संदेश देता है कि हम सभी उसी अनंत सत्ता के अभिन्न अंग हैं।

पौराणिक उपनिषद छांदोग्य से एक कहानी है तत् त्वम् असि। उपनिषद महावाक्य स्वरूप में लघु है, परंतु बहुत गहन विचार समाये हुए हैं। चार प्रमुख महावाक्य हैं। ऋग्वेद के ऐतरेय उपनिषद से प्रज्ञानम ब्रह्म, अर्थात वो प्रज्ञानम ही ब्रह्म है। सामवेद के छांदोग्य उपनिषद से तत् त्वम् असि, अर्थात वो ब्रह्म तुम ही हो। यजुर्वेद के बृहदारण्यक उपनिषद के ऐतरेय उपनिषद से अयम् आत्मा ब्रह्म, अर्थात ये आत्मा ब्रह्म है। अथर्ववेद के मांडर्क उपनिषद के ऐतरेय उपनिषद से अहम् ब्रह्मास्मि, अर्थात मैं ब्रह्म हूँ। और सामवेद के छांदोग्य उपनिषद से महावाक्य तत् त्वम् असि एक आध्यात्मिक संवाद है गुरुपिता और शिष्य पुत्र के बीच।

पिता उद्दालक ऋषि हैं, महापंडित वेदों के ज्ञाता, धुरंधर दार्शनिक और तर्क वितर्क में निपुण, और उनके 24 वर्षीय जिज्ञासु पुत्र श्वेत केतु 12 वर्षों की शिक्षा के बाद लौटे हैं।

0: क्या तुम उस ज्ञान से अवगत हो जिसके द्वारा हम सब कुछ जानते हैं और जो हमें जानना आवश्यक है?
1: तात, मैं उस ज्ञान के बारे में जानना चाहूंगा।

0: जी पिताजी।
1: क्या तुम शहद इकट्ठा कर रही इन मधुमक्खियों को देख पा रहे हो?
0: हाँ हाँ तात।
1: भिन्न भिन्न फूलों से निकला हुआ रस जब एक हो जाता है तो वो शहद बन जाता है। तब शहद बनने के बाद वो कह सकता है कि मैं इस फूल का रस हूं या उस फूल का रस हूं?
0: नहीं तात।
1: इसी तरह जब कोई उस चेतना से एक हो जाता है तब उसकी अपनी पहचान समाप्त हो जाती है।
0: जी तात, फिर जगत में इतनी विविधता कैसे आई?
1: शुरुआत में केवल एक था और फिर एक को कई में प्रतिलक्षित किया गया। सृष्टि के जन्म से पूर्व द्वैत के अस्तित्व से रहित, नाम और रूप से रहित एकमात्र सत्य स्वरूप अद्वितीय ब्रह्म ही है। वही ब्रह्म आज भी विद्यमान है।
0: जी तात।
1: उसी ब्रह्म को तत्वमसी कहा गया। वो शरीर और इंद्रियों में रहते हुए भी उनसे परे है, आत्मा में उसका अंश मात्र है।
0: जी।
1: उसी से उसका अनुभव होता है किंतु वो अंश परमात्मा नहीं है।
0: जी पिताजी।
1: वो उससे दूर है, वो संपूर्ण जगत में प्रतिभासित होते हुए भी उससे

0: की तू जीतात, क्या तुम जानते हो हम जिस अस्तित्व को देख नहीं सकते हैं तो हम कैसे जानते हैं कि वो विद्यमान है?
1: नहीं तात, मैं नहीं जानता हूं, कृपया मुझे समझाएं।
0: तो वत्स, जाओ उस वट वृक्ष के पास और एक फल तोड़ कर ले आओ।
1: जो आज्ञा तात।

0: कैसे राह फलता।
1: वत्स, अब इसे तोड़कर इसके दो टुकड़े कर दो।
0: जी। पिताजी, इसमें तो सैकड़ों बहुत ही छोटे छोटे बीज हैं।
1: उनमें से एक बीज निकालो और उसे तोड़ो मेरे वत्स।
0: जी।
1: और अब मुझे बताओ कि इसमें क्या देख रहे हो?
0: अब नहीं तो यहां तो कुछ भी नहीं है तात।
1: वत्स, तो फिर एक छोटे से बीज से एक विशाल बरगद का वृक्ष भला कैसे बन जाता है?
0: तो फिर तात, जिस अस्तित्व को हम देख नहीं सकते हैं, तो कैसे सब प्राणियों को जन्म दे सकता है तात?
1: मुझ पर विश्वास करो मेरे वत्स, वो सूक्ष्म बीज कुछ भी नहीं, स्रोत था विशाल बरगद वृक्ष का। एक अदृश्य और सूक्ष्म सार पूरे ब्रह्मांड की आत्मा है। सर्वम तत्स्वयं स आत्मा, यही सर्वोच्च वास्तविकता है और यही सब में स्वयं विद्यमान है, यही आत्मा है, तत् त्वम् असि।
0: मैं आभारी हूं पिताजी, आपने मुझे ज्ञान हासिल करने में मदद की है, जिससे अनदेखा देखा हुआ हो जाता है, अज्ञात ज्ञात हो जाता है और यही सब में स्वयं मौजूद है। तत् त्वम् असि।
1: ईश्वर तुम पर अपनी अनन्य कृपा बनाए रखे।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वह ब्रह्म तुम ही हो। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, कलाकार बाबला कोचर, प्रवीण शर्मा और प्रीति मिश्रा, ध्वन्यंकन विकास सांगवान, आलेख डॉक्टर जितेंद्र सिंह, मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा निर्माण जगबंधु जाना। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम वो ब्रह्म तुम ही हो। और श्रोताओं, अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अजीत
3: और उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी
2: कुसुमलता,
3: जगबंधु,
2: चेतना
3: और मंजू जी के साथ
4: दिस इज आकाशवाणी कोहिमा FM ट्रैकोबैन 103 MHz।
5: FM ट्रैकोबैन
6: 103 MHz,
5: News, music and entertainment.
6: FM
5: 103 MHz.
4: Hello and a very good afternoon to every one of you. Welcome. This is your FM Tracker at 103 MHz. I'm your RJ Josiah here, and let me first of all give you the real-time traffic update of Kohima Town as of 3 PM. So starting from Mount Colado BHQ Junction, both north and the southbound, the status of traffic is light. And from PHQ Junction to Mazar Junction, both the north and the southbound, the status of traffic is light. From TCB to Razu Point, the northbound is moderate. You can take the alternate route, that is from Box Cutting to NHAK to Census Point. The southbound, that is from Razu Point to TCB, it's moderate. You can take the alternate route, that is from Bulbari to Kochize Crown to Razu Point. From Razu Point to Census Point, that is a northbound, the status of traffic is light, but the southbound, the status of traffic is moderate. The alternate route for this is Census Point to NHAK. From High School Junction to Census Point, both the north and the south.

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: नई कार जीतने का मौका, वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
2: रुक जा बुड्ढू।
3: व्हाट? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
1: ओ, तू समझ गई ना।

0: In the first phase of census, the house listing and housing census will be conducted. This will record details about your dwelling and housing. Let us make this effort successful through our participation. Let every person join, every household take part, and let the nation move forward. Census 2027, our census, our progress.
1: Well, my dear friends, I'm making a little boiler caller. Hello.
2: Hello, Sarji, namaskar.
1: Hello, namaskar. Who is on the line?
2: ग्राम हीरापुर जिला सीहोर मध्य प्रदेश से भगवान सिंह परमार बोल रहा हूँ सर जी. आज मेरा पहला कॉल लग रहा है, बड़ी खुशी की बात है सर.
1: क्या बात है, भगवान सिंह परमार प्रोग्राम में स्वागत है. और बताइए आज कौन सा वाला गीत सुनना चाहूंगा
2: सर. बरसात फिल्म ढूंढ लीजिए 1995 की सर, उसमें एक गीत है, आप मुझे थोड़ा सा बता देंगे उस पर.
1: ओके
2: जी.
1: बरसात 2005 का.
2: हाँ जी
1: 2005 का.
2: 1995.
1: अच्छा 1995 का तो नहीं आया, लेकिन मैं अच्छा 1995 का देख रहा हूँ.
2: हेगा सर, हेगा yes. आपके पास है.
1: 97 का है परसाद. यस yes.
2: कौन सा है ये?
1: तो एक दिल पागल दीवाना है एक.
2: जी यही दिल पागल दीवाना है, यही सुना दीजिए.
1: अच्छा ठीक है, और किसी का नाम लेना चाहूंगा?
2: यही वाला है सर गीत, में यही सुनने वाला था आपने जो बताया.
1: ओके
2: जी. और सर मैं दोस्तों का नाम लेना चाहूंगा, पहले तो आपको डेलिकेट रहेगा.
1: थैंक यू.
2: और हमारे ग्रुप में से हैं श्रीपाल गोयल जी हैं, योगेश जांगड़े जी हैं, और बहुत सारे मित्र हैं सर, गौतम राय बोले, लोकेन वर्मा जी हैं
1: जी.
2: और हमारे मित्र हैं गज

0: राज लोधी जी, शिवा लोहट जी, तनुश्री बिटिया है, अंजलि भस्मतारी, अमल भस्मतारी, अम्बिमल भस्मतारी, रमेश पात्र है, भाईकान मुंडा जी, रमेश प्रजापति जी, पूरन वर्मा जी, राकेश जी, आशुतोष जी हैं, अविनाश जी हैं, प्रेम सिंह सिसोदिया, केसे सिंह राजपूत, रामबाबू शर्मा, मंगलाल चंदेल, सामंकर गंगाधर जी, इन सबके साथ सुनना चाहेंगे सर। और जो रहेगा सभी को डेडिकेट रहेगा सर।
1: ओके, थैंक यू सो मच,
0: धन्यवाद सर जी।
1: ओके, बाय बाय। तो मेरे फ्रेंड्स अमिखन लागा रेगुलर लिस्टनर मध्य प्रदेश बरा भगवान सिंह बर्मार दाही रिक्वेस्ट हुआ लगा गीत अमिखन होनी अब बरसात फिल्म बरा कुमार सानो आवाज़ते म्यूजिक दिस इन नदीम और श्रवण लिरिक्स अनवर और तई नाम लो सबके यू गीत डेडिकेट कर दिए से शुनी कि एन्जॉय कर माई डियर फ्रेंड्स।

0: মাই ডিয়ার ফ্রেন্ডস, আপুনি এখন লতা মঙ্গেশকাৰ অৱস্থিত মান ভাল গীত শুনিছে। এতিয়া আমি খানগুৰি নেক্সট কলাৰ থাকি আছে। হেল্ল'
1: জি স্যার, নমস্কাৰ।
0: নমস্কাৰ, হু ইজ কলিং?
1: স্যার জি, শিবা লোহার এমপি বিদিশা আছে।
0: শিবা লোহার এমপি
1: বিদিশা,
0: বিদিশা আছে। ওকে, শিবা লোহার প্রোগ্রামে স্বাগত হয়। আর বতাই, আজ কোন সওয়ালা গীত শোনা চাহুঙ্গা?
1: জি, বহুত বহুত ধন্যবাদ স্যার জি। মুভি কা নাম হ্যায় কুরুক্ষেত্র।
0: ওকে,
1: ये मूवी मिल पाएगी सर अपने पास?
0: मैं ढूंढ रहा हूँ, शायद ये वाला मूवी मेरा पास नहीं है, म्यूजिक बैंक में नहीं है। और कोई दूसरा मूवी होगा?
1: जी सर, आशिक बनाया मूवी मिल जाएगी, आशिक बनाया आपने?
0: मैं ढूंढ रहा हूँ। और हाँ, है मूवी है मेरे पास। कौन सा वाला गीत?
1: हाँ तो सर, इसमें गाना है आपकी कशिश।
0: जी, आपकी कशिश। ओके, और किसी का नाम लेना
1: चाहूँ? मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ सर
0: जी,
1: के इस कार्यक्रम में देखिए फिल्म के काफी गहमा गहमी हो जाती है, कभी कभी चार चार पांच पांच नाम बताना पड़ते हैं। तो आप अगर ऑफलाइन में कॉल उठा के फिल्म वगैरह गाना वगैरह पूछ के, तो यहाँ पे समय कम लगेगा सर।
0: वो सही बात, वो सही बात है। थैंक यू सो मच फॉर दैट। और बताइए किस किस का नाम लेना चाहूँगा?
1: जी, हमारे मित्र हैं पूरन वर्मा जी,
0: जी
1: पुरुषोत्तम कुमार जी, अविनाश जी, गोल्डी जी, राकेश जी, भगवान सिंह परमार जी, रमेश प्रजापति जी, रमेश पात्रे जी, अमल जी, बिमल जी और तमाम सुनने वाले।
0: ओके, थैंक यू सो मच, आपसे बात हुआ बहुत अच्छा लगा। और सुनो आपका रिक्वेस्ट सॉन्ग। ओके,
1: थैंक यू सर,
0: यू आर वेलकम, बाय
1: बाय।
0: তো মাই ডিয়ার ফ্রেন্ডস, আমি খালনাগা লিসনার, রেগুলার লিসনার থাকি আছে নাইপি মধ্যপ্রদেশ প্রাহি। তো তাই রিকুয়েস্ট করল গীত আমি খান শুনি হব হিমেশ রুশামিয়া আর কৃষ্ণা আহি অবস্থায়। মিউজিক দিছে হিমেশ রুশামিয়া, লিরিক্স সমীর, ফিল্ম আছে আশিক বানায়া আপনে, আর তাই নাম লওয়া সবকে এটুকি টিকিট করে দিয়েছে, শুনি কিনা এনজয় করবি মাই ডিয়ার ফ্রেন্ডস।

0: Well, my dear friends, अब निखन आपके गशेश हिमेशु शमिया कृष्णा और अहिर लगा वस्ते अशिक बनाया आपने फिल्म पर गीत होनी थकी जाए और इतने तो होले अमिखन लगा रेगुलर लिसनर शिवा लोहार मध्य प्रदेश प्रातः ही रिक्वेस्ट कर लगा गीत होनी थकी जाए और माय डियर फ्रेंड्स लाइन खुला था कि जब निकल सब बिचारी ऐसे आगजवानी कुहिमा एफएम ट्रक बान 103 मेगाहर्ट्ज़ तब निकल ये तो प्रोग्राम प्रोडक्ट करिए होनी ऐसे और अब निकल ही याते दिमापुर वोखा भेग अलग अलग थाका सब मनोगन निजों ने चुड़ा का फ्रीक्वेंसी दे अपने खाने तो होनी वो पड़े ऐसे और माय डियर फ्रेंड्स वी हैव द नेक्स्ट कॉलर विद अस हेलो हेलो
1: हेलो
0: हेलो कौन कोई ऐसे
1: नमस्ते
0: नमस्ते हु इज ऑन द लाइन
1: My name is Prem Singh Sisodia.
0: Okay, Prem Singh Sisodia.
1: जी ग्राम बछोड़ा तहसील नागदो जिला उज्जैन से.
0: Okay, उज्जैन से. प्रोग्राम में स्वागत है प्रेम सिंह जी और पता है आज का दिन कैसे रहा?
1: दिन काफी अच्छा रहा. खेत में मजदूर लेके गए थे काम करवाने के लिए. खरपतवार निकालने का काम हो रहा है अभी.
0: Okay.
1: जी 20 मजदूर लेके गए थे. पूरा दिन निकाल दिया खेत में.
0: Okay.
1: जी
0: ठीक है और बताओ आज कौन सा वाला गीत सुनना चाहूंगा?
1: फिल्म का नाम है कुछ कुछ होता है.
0: ओके क्या कुछ होता है उधर?
1: हाँ जी क्या कुछ होता है? अभी तो काम चल रहा है तो बहुत थकान हो रही है.
0: ओके और कौन सा वाला सॉन्ग?
1: लड़की बड़ी दीवानी है.
0: ओके और किस किस को ये डेडिकेट करना चाहूंगा?
1: ये गाना डेडिकेट रहेगा भगवान सिंह परमार, आशुतोष जी, अविनाश जी, संगीता जी, विमल जी, अमर जी, रमेश जी और भाईकोन मुंडा.
0: ओके
1: और हाँ सुनील झा, ये सभी लोग कार्यक्रम सुन रहे हैं. और एक हमारे एक नए दोस्त बनने वाले हैं, अभी बने नहीं है और उनसे भी बात हो जाएगी हमारी.
0: अच्छा ठीक है.
1: हाँ जी और हाँ जी एक हमारे दोस्त है तनुश्री.
0: जी जी जी
1: हाँ जी ये सभी लोग कार्यक्रम से जुड़ते भी आकाशवाणी सुनते हैं.
0: यस
1: और अभी फोन भी आए हैं बारी बारी से सभी के आपके पास में.
0: हाँ तो थैंक यू सो मच प्रेम सिंह सिसोदिया, आपसे बात हुआ बहुत अच्छा लगा और सुनो आपका रिक्वेस्ट सॉन्ग.
1: जी थैंक यू सो मच.
0: यू वेलकम. बाय. तो माय डियर फ्रेंड्स अमिखन लगा रेगुलर लिस्नर प्रेम सिंह सिसोदिया उज्जैन मध्य प्रदेश पर दाहे रिक्वेस्ट को लगा गीत अमिखन होनी हो ये ते कुछ कुछ होता है फिल्म रहा दिए से कुमार सानू और अलका यज्ञिक अवस्थे म्यूजिक दिसे जतीन और ललित लिरिक्स समीर और ताई नाम लो सब के टिकट दिए से होने के ना एंजॉय कर भी माय डियर फ्रेंड्स.

0: Well, my dear friends of Michael Obadai Max caller থাকি আছে. Hello.
1: Jay
0: Matadi. Program is swagat hai. Aur bataiye.
1: Mera naam hai Puran Verma.
0: Okay, Puran Verma ji.
1: District Jaipur, Rajasthan. Gaon ka naam Kant Mel bola.
0: Ji, Puran Verma. Program is swagat hai. Aur bataiye, aaj kaun sa wala gees suna chahunga?
1: Aur kaise ho sir aap?
0: Bilkul, badhiya hoon. Aur aap kaise hai?
1: फिल्म का नाम है सोने की लंका.
0: अच्छा, फिल्म का नाम बताइए.
1: फिल्म का नाम है सोने की लंका.
0: शायद मेरा म्यूजिक बैंक भी ये नहीं है.
1: नहीं है?
0: नहीं है. और दूसरा
1: तो हमसे मिले तुम,
0: ये भी पता नहीं. ये भी नहीं है. आई एम सॉरी,
1: ये भी नहीं. हम तो मिले तुम, ये भी नहीं है.
0: नहीं है. हमसे पार कर कौन, ये है. हमसे है मुकाबला, ये है.
1: नहीं, हमसे मिले तुम तो ये थी. तो फिर नहीं है. फिल्म
0: नहीं है.
1: तो फिर फिल्म का नाम रहेगा गुलाम.
0: ठीक है,
1: गुलाम.
0: हाँ, गुलाम है. और बताइए
1: गाने के बोले आंखों से तूने ये क्या कह दिया.
0: ओके, और किस किस को डेडिकेट करना चाहूंगा?
1: सबसे पहले तो आप है.
0: थैंक यू.
1: और मेरा दोस्त है अभी को लगातार सीवालवार है
0: जी.
1: भगवान सिंह जी है, अभिनाथ जी है, रमेश पात्रे है, अमल है, बिमल है, गोल्डी भाई है
0: जी.
1: और शिमला से राकेश है, और जितने भी कॉलर लाइव जिसका भी नाम लेने से छूट गया उन कॉलरों के लिए.
0: ओके, थैंक यू सो मच पुरान सिंह वर्मा. थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग. और सुनिए आपका रिक्वेस्ट सॉन्ग. You're welcome, bye.

0: Well, my dear friends, আপনি খান খুললাম ফিল্মরা গীত শুনিলে এতিয়া আমি খেলা করে নেক্সট কলার থাকি আছে হ্যালো
1: হ্যালো নমস্কার
0: হ্যালো নমস্কার
1: मैं राकेश बात कर रहा हूँ शिमला से
0: ओके राकेश शिमला से प्रोग्राम में स्वागत है और बताइए आज कौन सा वाला गीत सुनना चाहूंगा
1: जी अंदाज मूवी का मिलेगा
0: अंदाज होगा
1: हाँ जी अंदाज
0: ओके और कौन सा वाला गीत
1: आएगा मजा अब बरसात का
0: मैं देखता हूँ मैं ढूंढ रहा हूँ
1: जी शिमला में अब बरसात हो रही है बारिश आ रही है
0: ये वाला सॉन्ग नहीं है मेरा पास
1: अच्छा अंदाज कौन सा आपके पुरानी वाली है नई वाली
0: पुरानी भी है नई भी है
1: नई वाले अंदाज का सुनना है
0: जी
1: उसमें है आएगा मजा बरसात का
0: लेकिन इसमें मतलब 1971 का है
1: अच्छा तो इसमें कौन कौन से गाने
0: मैं बताता हूँ आपको दिल उसे दो है ना बोलो बोलो मुझे प्यास ऐसे प्यास रे मामा रे
1: ये तो पुरानी वाली है नई वाली अक्षय कुमार वाली अंदाज नहीं है
0: नहीं है सॉरी
1: अच्छा वो नहीं है तो मैं फटाफट आपका दूसरा मूवी बोल देता हूँ
0: ओके
1: तो सौतन की बेटी मूवी है
0: हाँ
1: तो इसका सुना दो आप हम भूल गए हर बात मगर तेरा प्यार नहीं भूले
0: फिर से बताइए
1: हम भूल गए हर बात
0: ओके लता मंगेशकर वाज माय राइट
1: लता मंगेशकर जी
0: और बताइए किस किस को ये डेडिकेट करना चाहूंगा
1: सबसे पहले तो ये गाना आपको डेडिकेट रहेगा
0: थैंक यू
1: तो अभी कॉल लगा था पूरन वर्मा
0: जी
1: शिवा लोहत
0: जी
1: भगवान सिंह परमार और अमल बसमचारे बिमल बसमचारे और रुको बिल्ला मिठा
0: okay.
1: और महाराष्ट्र से तनुश्री हैं और गजरा तोदी हैं और तमाम सुनने वाले श्रोता हैं
0: okay.
1: जिनका भी नाम छूट गया है और रमेश प्रजापति और रमेश पात्रो हैं और सभी के लिए गाना डेडिकेट रहेगा
0: ओके थैंक यू सो मच राकेश जी आपसे बात हुआ बहुत अच्छा लगा और सुनो आपका रिक्वेस्ट सॉन्ग
1: जी धन्यवाद
0: यू वेलकम बाय
1: बाय
0: তো মাই ডিয়ার ফ্রেন্ডস আমি এখান লাগার রেগুলার লিসনার থাকি আছে রাগেশ ফ্রম শিমলা তাই রিকুয়েস্ট করে লাগা গীত আমি এখানে দিয়া শুনি হব লতা মঙ্গেশকর অবস্থায় ফিল্ম আছে সদিন কি বিটি ফিল্ম লাগা মিউজিক দিছে বেদপাল লিরিক্স সবান কুমার শুনি কিনা এনজয় করবি আর তাই নাম লওয়া সবকে এটুকি ডেডিকেট করে দিয়েছে

0: संगीता देवनाथ बोल रही हूँ।
1: त्रिपुरा से?
0: संगीता देवनाथ।
1: ओके संगीता जी, प्रोग्राम में स्वागत है। और बताइए आज कौन सा अलग गीत सुनना चाहूंगा
0: जी? फिल्म का नाम है आनंद आश्रम।
1: फिल्म का नाम बताइए फिर से।
0: आनंद आश्रम, और गाने का बोल है सारा प्यार तुम्हारा।
1: अच्छा आनंद आश्रम, ठीक है। और बताइए किस किस को ये गीत डेडिकेट करना चाहूंगा
0: जी? पहले आपको सर,
1: थैंक यू सो मच।
0: और अमोल भैया, विमल भैया, भगवान भैया
1: जी,
0: पूरन वर्मा जी, राकेश जी, अविनाश भैया और मेरे हस्बैंड आशुतोष जी।
1: अच्छा ठीक है, थैंक यू सो मच सुनीता जी फॉर कॉलिंग। और सुनिए आपका रिक्वेस्ट सॉन्ग। ओके
0: नमस्कार सर।
1: ओके थैंक यू, बाय। तो मेरे फ्रेंड्स अमिखल नगल दिसने सुनीता नॉर्थ त्रिपुरा पर चाहे रिक्वेस्ट कर लगा गीत अमिखने दिया होनी हम हो तय नाम लो सोपिए टू गीत टिकट कर दिए से। फिल्म से आनंद आश्रम, आशा भोसले और किशोर कुमार अवस्थे अमिखने दो गीत होनी हम हो। म्यूजिक दिसे शायमाल मित्रा, लिरिक्स इंदिवर होनी के ना एंजॉय कर माई डियर फ्रेंड्स।

0: Well, my dear friends, it's your program day. Last lucky caller, I'm going to take it. Hello.
1: Hello.
0: Hello, who is calling?
1: अरे बारी इंतजार करवाया यार, क्या बात है, पूरा एक घंटा हो गया मेरे को।
0: अच्छा,
1: आपको मिलने में एक घंटा लगा भाई, बताइए आप।
0: अरे यार ऐसा होता है कभी कभी, राइट, आपको पता है। हाँ,
1: मैं रमेश प्रजापति, ग्राम माया, तहसील रेड्डी, जिला सीहोर, एमपी से बोल रहा हूँ सर जी।
0: जी रमेश जी, प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। और बताइए, आज आपका मतलब आज का आप लास्ट लकी कॉलर है
1: जी।
0: जल्दी से बताइए फिल्म का नाम।
1: सरगम
0: फिल्म से कौन सा वाला गीत?
1: डफली वाले डफली भैया।
0: ये वाला गीत मेरा पास नहीं है।
1: नहीं है?
0: नहीं।
1: फिर गोला का गोरा काला,
0: सरगम से
1: गोरा काला फिल्म का नाम।
0: अच्छा, फिल्म का नाम
1: जी।
0: मैं ढूंढ रहा हूँ। डफली वाले हैं सरगम से। यस, ये बचा देखा। यस, पहला वाला गीत है।
1: कौन सा?
0: डफली वाले
1: है
0: जी।
1: जी जी, वही सुनवा दो डफली वाले।
0: यस, yes, क्यों नहीं। और बताइए किस किस का नाम लेना चाहूंगा?
1: अरे नाम तो मेरे को बहुत सारे हैं, सबसे पहले तो आपको
0: थैंक यू।
1: तो भगवान सिंह परमार है, गजराज लोधी, केसी सिंह राजपूत, मंगला चंद्र, प्रेम सिंह सिसोदिया, लोकेंद्र वर्मा उज्जैन से, आशुतोष जी है
0: जी।
1: और पूनम जी है कानपुर से, अविनाश जी है राकेश जी है शिमला से, शिवा विदिशा से, तो विमल भस्मकारी, अमन भस्मकारी, गोल्डी जी है, अमर सिंह साहू है, रमेश पात्र है, रक्कू बिले बैठा है, तनुश्री बिटिया है हमारी, महाशाट से सबसे अच्छी बिटिया है हमारी, और हमारे मित्र से एक मिनट बात कर लो।
0: क्या बात है।
2: हेलो।
0: हेलो, कैसे है
2: जी? नमस्कार सर
0: जी। नमस्कार
2: जी, मैं लक्ष्मीकांत त्रिपाठी बात कर रहा हूँ।
0: ओके लक्ष्मीकांत जी, आपसे बात हो रहा बहुत अच्छा लगा।
2: एक घंटे से वेट कर रहे थे कि कॉल लगे, आपसे बात हो।
0: क्या बात है, और अभी बात हो गया, कैसा लगा?
2: सर जी, हम प्रयागराज उत्तर प्रदेश से हैं।
0: ओके
2: जी, तो अभी मित्र से मुलाकात हुई तो हमने कहा चलो आज बात करते हैं।
0: क्या बात है, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। और ऐसे ही बनाते रहना, ठीक है
2: जी?
0: ऐसे ही बनाते रहना प्रोग्राम में।
2: ओके,
0: थैंक यू सो मच। माय डियर फ्रेंड्स, हम इखल लगा लिसनर मध्य प्रदेश प्राही प्रेम सिंह वर्मा तैलगा रिक्वेस्ट गीत और तैलगा साथी तै दुजन खुदा पाती आसे आमी खान सभी शुनी आसे। तो यू लास्ट गीत आमी खान शुनी हम। थैंक यू सो माच फर कलिंग। अपनी खान कौन कौन कल कर बेची खुशी बात जाना दी आसे और यू निचिना आमी खान सदा जोड़ा कि ना थको कई दी आसे। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी अवस्था अपनी खान शुनी आसे। म्यूजिक दिखे लक्ष्मीकांत प्यारेला, लिरिक्स अनंत बक्सी, फिल्म आसे

0: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामे से हुई। दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों को लेकर बार बार बाधित। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों से बातचीत की, धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने की अपील की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और मोल्दोवा के बीच मजबूत आर्थिक सहयोग तथा तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में सहयोग का आह्वान किया। जम्मू संभाग में मूसलाधार वर्षा से 4 और लोगों की मौत। पिछले 2 दिन में मरने वालों की संख्या 16 हुई। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कई जिलों में बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में कल तेज बारिश का रेड अलर्ट। और ब्रिटेन में लेबर पार्टी के एंटी बर्नहम ने नए प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। अब समाचार विस्तार से। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामे से हुई। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन आज विभिन्न मुद्दों सहित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। हंगामा जारी रहने पर कार्यवाही बार बार स्थगित किए जाने के बाद कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: विपक्ष के विरोध के चलते लोकसभा की कार्यवाही 7 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 6 बार स्थगित की गई। इस व्यवधान के कारण दोनों सदनों में प्रश्नकाल नहीं चल सका। वहीं विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य उच्चतम न्यायालय न्यायालय संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन कर न्यायाधीशों की संख्या को मौजूदा 33 से बढ़ाकर 37 करना है। इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं है। वहीं राज्यसभा में जब सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई तो 9 निर्वाचित सदस्यों ने उच्च सदन के सदस्य के तौर पर शपथ ली। आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चाहे मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, दोनों के सक्रिय रहने पर वे अत्यंत उत्पादक सिद्ध होते हैं। संसद के मॉनसून सत्र से पूर्व संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि महज 1 महीने में देश ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं जो प्रत्येक नागरिक को गौरवान्वित करती हैं। श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया।
3: मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले 1 महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है और देशवासी गर्व से भर जाएं, इस प्रकार की सिद्धियों का सिलसिला चला है। चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
1: केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक में प्रतिनिधिमंडल के साथ विस्तार से चर्चा हुई। श्री नड्डा ने सभी प्रदर्शनकारियों से धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने में प्रशासन का सहयोग करने का आग्रह किया। इस बीच दिल्ली पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों से शांति, संयम और सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की है। वीडियो संदेश में दिल्ली पुलिस के अपर आयुक्त और जनसंपर्क अधिकारी राजीव रंजन ने जनता को किसी भी मंच के माध्यम से अफवाहों, गलत सूचनाओं पर विश्वास न करने और न ही उन्हें फैलाने की सलाह दी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज किशिनो में स्टेफान सेल मारिसे स्वेंट स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। उनके साथ भारत और मोल्दोवा के कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे।

0: ये समारोह मोल्दोवा के राष्ट्रीय नायक को सम्मान देने के लिए आयोजित किया गया। ये दोनों देशों के बीच दोस्ती, साहस और एक दूसरे की आजादी का सम्मान करने की भावना को भी दर्शाता है। राष्ट्रपति ने आज भारत और मोल्दोवा के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर बल देते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में साथ काम करने की बड़ी संभावनाएं हैं। मोल्दोवा की राजधानी किशिनोव में भारत मोल्दोवा बिजनेस फोरम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि किसी भारतीय राष्ट्रपति की मोल्दोवा की पहली राजकीय यात्रा है।
1: मोल्दोवा की पहली राजकीय यात्रा है। ये हमारे द्विपक्षीय संबंधों में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है और हमारे दोनों देशों के बीच बढ़ती मित्रता और आपसी विश्वास को दर्शाती है। भारत और मोल्दोवा तीन दशकों से मधुर और मैत्रीपूर्ण संबंध साझा करते आ रहे हैं। भौगोलिक रूप से दूर होने के बावजूद शांति, विकास और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के प्रति हमारे साझा प्रतिबद्धता के अनुरूप हमारी साझेदारी निरंतर बढ़ती रही है।
0: राष्ट्रपति मुर्मू और मोल्दोवा की राष्ट्रपति माया सांडू ने आज व्यापार, निवेश, कृषि, स्वास्थ्य, नवीकरणीय ऊर्जा, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नवाचार सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया है कि पनामा के विदेश मंत्री हाइवियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्केज की यात्रा से सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे। नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री के साथ बैठक में डॉ. जयशंकर ने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच हाल में हुए उच्च स्तरीय आदान प्रदान की गति को और आगे बढ़ाती है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों की सरकारें और उनके नेता भारत पनामा साझेदारी को गहरा और व्यापक बनाने के लिए उत्सुक हैं। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में संयुक्त अरब अमीरात के अर्थव्यवस्था और पर्यटन मंत्री अब्दुल्ला बिन तौक अल मर्री और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की। श्री गोयल ने बताया कि बैठक में व्यापार, निवेश, पर्यटन और आवाजाही के क्षेत्र में द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। सर्वोच्च न्यायालय ने आज उत्तर प्रदेश सरकार से अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे के कथित गबन की जांच के लिए विशेष जांच दल एसआईटी गठित करने की संभावना के बारे में जानकारी देने को कहा। न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को इस मुद्दे का राजनीतिकरण न करने की चेतावनी दी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और वी मोहना की पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को इस बारे में निर्देश देने को कहा कि क्या प्राथमिकी दर्ज होने से पहले पूरे मामले की जांच करने वाली एसआईटी को स्थानीय पुलिस के बजाय इस मामले की जांच का जिम्मा सौंपा जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय इस याचिका पर 27 जुलाई को फिर सुनवाई करेगा, जब उत्तर प्रदेश सरकार मामले में एसआईटी जांच के बारे में जानकारी देगी। विधि और न्याय मंत्रालय ने अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2026 का मसौदा हितधारकों और आम जनता के परामर्श के लिए जारी कर दिया है। ये मसौदा बार काउंसिल ऑफ इंडिया के परामर्श से तैयार किया गया है। इसे टिप्पणियां और सुझाव आमंत्रित करने के लिए बार काउंसिल की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। ब्रिटेन में लेबर पार्टी के नवनिर्वाचित नेता एंडी बर्नहम ने नए प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। किंग चार्ल्स द्वितीय ने ग्रेटर मैनचेस्टर के 56 वर्षीय पूर्व मेयर को किर स्टार्मर के इस्तीफे के बाद नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया था। श्री एंडी बर्नहम ने कहा कि हम ब्रिटेन के लिए बड़े बदलाव लाएंगे।
2: हम ब्रिटेन के लिए पिछले 40 सालों में सबसे बड़े बदलाव लाएंगे, एक नया राजनीतिक और आर्थिक मॉडल बनाएंगे। 1980 के दशक में ब्रिटेन ने कुछ गलत कदम उठाए थे, देश के बड़े हिस्सों में उद्योग खत्म हो गए और वे अब तक उससे उबर नहीं पाए हैं, इसीलिए हम राजनीति को बदलेंगे।
0: इससे पहले किर स्टार्मर ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में 10 डाउनिंग स्ट्रीट से अपना अंतिम भाषण दिया और फिर औपचारिक रूप से अपना इस्तीफा देने के लिए किंग चार्ल्स से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि वे एंडी बर्नहम को सत्ता सौंप रहे हैं और वे उन्हें पूरा समर्थन देंगे। जम्मू कश्मीर में बारिश से जुड़ी घटनाओं में आज जम्मू संभाग में 4 और लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही पिछले 2 दिन में मरने वालों की संख्या बढ़कर 16 हो गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: तेज बारिश के कारण पुंछ और रजौरी जिले में बचाव और राहत कार्य आज प्रभावित हुआ।

0: अलाए विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन में 12 लोगों की मौत हो गई थी जबकि कई अन्य अब भी लापता हैं। प्रशासन ने संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, राज्य आपदा मोचन बल, जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना के दल प्रभावित क्षेत्रों में तैनात हैं तथा संवेदनशील इलाकों में हाई अलर्ट पर हैं। पुंछ, राजौरी, रियासी और उधमपुर के प्रमुख मार्गों को यातायात के लिए खोल दिया गया है। मौसम विभाग ने 23 जुलाई तक राज्य में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। जम्मू से एन गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
1: केंद्र शासित प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश, अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन के बाद उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने स्थिति की समीक्षा की। वहीं मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने राजौरी और पुंछ जिलों में बारिश से हुई मौतों पर मृतकों के परिजनों को 6-6 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। उत्तराखंड में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। पहाड़ी इलाकों में बारिश और भूस्खलन के कारण कई राष्ट्रीय राजमार्गों, प्रमुख सड़कों और ग्रामीण संपर्क मार्गों पर यातायात प्रभावित हुआ है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में राज्य के कई जिलों में मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है।
2: तेज बारिश के चलते देहरादून मसूरी मुख्य मार्ग पानी वाले बैंड के पास क्षतिग्रस्त हो गया है। लोगों की सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने इस मार्ग पर आवाजाही अगले आदेश तक पूरी तरह प्रतिबंधित कर दी है। आमजन से मार्ग के खुलने तक मसूरी आने जाने के लिए वैकल्पिक मार्ग का प्रयोग करने का अनुरोध किया गया है। वहीं गढ़वाल आयुक्त आनंद स्वरूप ने चारधाम यात्रा मार्गों के बंद होने की स्थिति में तीर्थयात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर ठहराने और मार्ग पूरी तरह सुरक्षित होने के बाद ही यात्रा शुरू करने के संबंधित जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं। तीर्थयात्रियों से अफवाह पर ध्यान न देने और प्रशासन की आधिकारिक सलाह मानने के लिए अपील की गई है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
1: हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिलों में मौसम विभाग द्वारा जारी रेड अलर्ट के मद्देनजर कल सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और सिरमौर जिलों में तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिन में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी अगले 2 से 3 दिन तक ऐसा ही मौसम रहेगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय कमजोर और वंचित वर्गों के सामाजिक और आर्थिक पुनर्वास के लिए स्माइल योजना लागू कर रहा है। इस योजना का उद्देश्य जरूरतमंद लोगों को सम्मानजनक जीवन जीने और स्थायी आजीविका के अवसर उपलब्ध कराना है। सरकार ने कहा है कि इस वर्ष जून तक लगभग 55,49,00,000 उपयोगकर्ता यूपीआई से जुड़ चुके हैं। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 में 24,162 करोड़ यूपीआई लेन देन में 314,00,000 करोड़ रुपए का आदान प्रदान हुआ। यूनिफाइड डिजिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस 2025-26 के आंकड़ों के अनुसार देश भर में स्कूलों में नामांकन बढ़कर लगभग 25 करोड़ हो गया है। लोकसभा में लिखित जवाब में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि प्राथमिक, प्रारंभिक, मध्य और माध्यमिक स्तर की शिक्षा में वर्ष 2025-26 में नामांकन अनुपात वर्ष 2024-25 की तुलना में बेहतर हुआ है। उन्होंने कहा कि सभी स्तरों पर स्त्री पुरुष समानता सूचकांक 1 या उससे अधिक है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज आयकर रिटर्न भरना, जागरूकता, सुविधा और समय से अनुपालन विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। सनदी लेखाकार और कर विशेषज्ञ शरद कोहली तथा बैंकिंग विशेषज्ञ अश्विनी राणा परिचर्चा में हिस्सा लेंगे। श्रोता स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। पीवी सिंधु कल से शुरू होने वाले चाइना ओपन 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय दल की अगुवाई करेंगी। महिला सिंगल्स में सिंधु के साथ देविका सिहाग और उन्नति हुड्डा शामिल हैं। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी और एचएस प्रणॉय टीम का हिस्सा हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामे से हुई। दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों को लेकर बार बार बाधित। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों से बातचीत की, धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने की अपील की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और मोल्दोवा के बीच मजबूत आर्थिक सहयोग तथा तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में सहयोग का आह्वान किया। जम्मू संभाग में मूसलाधार वर्षा से 4 और लोगों की मौत, पिछले 2 दिन में मरने वालों की संख्या 16 हुई। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कई जिलों में बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में कल तेज बारिश का रेड अलर्ट और ब्रिटेन में लेबर पार्टी के एंटी बर्नहम ने नए प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: In the first phase of census, the house listing and housing census will be conducted. This will record details about your dwelling and housing. Let us make this effort successful through our participation. Let every person join, every household take part, and let the nation move forward. Census 2027, our census, our progress.
1: हेलो
2: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
1: फिर से?
3: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए, अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
4: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
1: सर इतने कहाँ से?
4: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
1: 2 लाख
5: क्या हुआ पापा?
1: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
3: अरे
1: काट दिया,

0: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
1: फ्रॉड?
0: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
1: तो पैसे गवाओगे।
2: RBI कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: हेलो, गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स, माय लवली एंड ऑसम लिसनर्स, अपनी खान सबके प्रोग्राम में स्वागत करे आज अपनी खान लगा होस्ट और दोस्त आर जे तमजन लोग ने आज रात एक आर जे चॉइस इन द फिल्म सॉन्ग्स प्रोग्राम होने वो कारण अपनी खान सबके वेलकम करे आज और माय डियर फ्रेंड्स आज लगा प्लेलिस्ट होले अमी लगा हैंड पिक्ड एक प्लेलिस्ट थकी आज वेदर यू आर वाइंडिंग डाउन आफ्टर अ बिजी डे enjoying a quiet drive or simply relaxing at home. These timeless melodies are here to keep you company. So my dear friends, sit back, unwind and let music speak to your heart. Aji laga musical safari yate shuru kori diye ase ekta Sarfarosh film ramikani huniyabo Jagjit Singh laga one of the most loved melodies of the late 90s. Yari diye ase music dise jatinar lilit lyrics Nida Fuzzly. Honikina enjoy groovy, my dear friends.